91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तुहां सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्ना।

ए तुहां सारे दा अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कनिशोतो तुहां सारे इस कार्यक्रम सुना दे माटी दी महक ता सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तुहां सारे इये ही बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तुहां सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तुहां सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसदा नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओ कने तोहां सारी कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महक। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही, तोहां सारे ए बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन दी।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना हमारा विकास।

0: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
1: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
0: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालें क्या?
2: अरे ठहरिए ठहरिए, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं।
3: उठाओ उठाओ उठिए, अस्पताल ले जाओ भाई।
2: कमाल के हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं, 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए,
4: समझे?
2: तो याद रखिए देवी और सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
0: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
5: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
6: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
7: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे, कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे, आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया, क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला, आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा आप क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
8: कुछ मीठा बोलो।
9: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
8: मैं खाने की बात कर रही थी।
9: अच्छा, एक काम कर, गुलाब जामुन मंगा दो।
8: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना। तो
10: क्या?

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 MHz पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 MHz पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: मायके मत जाइयो।
1: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आज के कार्यक्रम में श्रोताओं बस इतना ही। अब अपनी रेडियो दोस्त पिंकी को दीजिए इजाजत और यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: आंगनबाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
1: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
2: हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
1: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते अभी ठीक हो जाएगा।
0: या फिर मुंह से जहर चूस के निकाले क्या?
2: अरे ठहरिए ठहरिए, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं।
3: उठाओ उठाओ, ठीक है अस्पताल ले जाओ भाई।

0: कमाल के हाँ हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवियों सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
1: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
2: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
3: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
4: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे। कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे। आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया। क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला। आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु, वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा आप क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
5: कुछ मीठा बोलूं?
6: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
5: मैं खाने की बात कर रही थी।
6: अच्छा, एक खाकर गुलाब जामुन मंगा था।
5: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना तुम।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। प्रातः के 9 बज चुके हैं और हम गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम लेकर हाजिर हो चुके हैं। श्रोताओं अब से लेके 11 बजे तक रहेंगे आपके साथ और सुनाएंगे आपको प्यारे प्यारे से गीत इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम में सबसे पहले आइए जान लेते हैं इस समय धर्मशाला का तापमान। 16 डिग्री सेल्सियस इस समय धर्मशाला का तापमान है श्रोताओं और वातावरण में नमी है 66%। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। श्रोताओं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला का आगाज कर रहे हैं प्रेम पुजारी फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ। गीत को गाया है किशोर कुमार ने।

शुद्ध 91.2 मेगा हर्ट्स पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सुन रहे हैं अपने रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब वक्त है आपको आज का विचार सुनाने का, तो आइए सुनते हैं आज का विचार। जिंदगी को अगर आसान बनाना है तो शिकायतें कम और शुक्रगुजार ज़्यादा होना सीखिए। जी हाँ श्रोताओं, आज का विचार, जिंदगी को अगर आसान बनाना है तो शिकायतें कम और शुक्रगुजार होना ज़्यादा सीखिए। जिंदगी में हर किसी को कोई ना कोई मुश्किल, कोई ना कोई तकलीफ ज़रूर होती है, और बहुत बार, कई बार श्रोताओं, हम उन मुश्किलों के अधीन होकर के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना छोड़ देते हैं और हमें लगता है कि सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां ऊपर वाले ने हमारे ही नाम कर दी हैं। जबकि हर किसी की ज़िंदगी में मुश्किलें होती हैं, हर किसी की ज़िंदगी में परेशानियां भी होती हैं। उन मुश्किलों और परेशानियों से पार होकर के हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और शुक्रगुजार होकर के आप अपनी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत बना सकते हैं। आपके जीवन में जो भी कुछ अच्छा है, भले ही वो कम है, थोड़ा है, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। या जीवन में किसी व्यक्ति की मदद से हमें कुछ मिला है, उसके लिए उस व्यक्ति का धन्यवाद कीजिए। हर चीज़ में शुक्रगुजार होना अगर हम सीख लेंगे तो ज़िंदगी जो है वो हमें वैसे खूबसूरत मौके और अधिक प्रदान करेगी और हमारी ज़िंदगी अधिक से अधिक खूबसूरत होती जाएगी। श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं मेरे साथ गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और अब आनंद उठाइए कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत का।

0: कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं, सुनो तो मोना, सुनो तो।

श्रोताओ 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ अब एक बहुत ज़रूरी सूचना है विद्युत आपूर्ति बाधित रहने से संबंधित। विद्युत उपमंडल 2 के सहायक अभियंता लोकेश चौधरी ने जानकारी दी कि विद्युत लाइन ट्रांसफार्मर स्थापित करने और विद्युत लाइनों के सामान्य रखरखाव कार्य के चलते 25 सितंबर यानी कल प्रातः बड़ोल, लोअर बड़ोल, अपर बड़ोल तथा अन्य साथ लगते क्षेत्रों में प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। मौसम खराब होने पर ये कार्य अगले दिन किया जाएगा और सभी लोगों से इसके लिए सहयोग की अपील की गई है। जी हाँ श्रोताओ, विद्युत आपूर्ति बाधित रहने से हमारे रोज़मर्रा के सारे काम रुक से जाते हैं, इसलिए ये जानकारी आप श्रोताओं के साथ साझा की है ताकि आप पहले से ही सचेत हों और बिजली से चलने वाले उपकरण जिन्हें चार्ज किया जाता है उन्हें आप समय रहते चार्ज कर लें और अगले दिन के लिए तैयार रहें। श्रोताओं आप सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: श्रोताओं, आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और कार्यक्रम में अब समय है प्रादेशिक समाचारों का। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम जारी रहेगा 9:30 पर भी। यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।
1: ये यात्रा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें हर

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। श्रोताओं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें जो काम रोज़ करने की उसी समय पर करने की आदत होती है वो अक्सर हम उसी समय पर करने के लिए तैयार हो जाते हैं या करना शुरू कर देते हैं। वैसा ही कुछ अभी कार्यक्रम में मेरे साथ भी हुआ है। प्रादेशिक समाचार प्रतिदिन हम सुनते हैं 9:20 पर, लेकिन कुछ समय के लिए बदलाव किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 9:50 पर। और उससे पहले श्रोताओं गीत संगीत का, बातों का और जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। श्रोताओ क्या कुछ खास है आज के दिन, इसके बारे में आपको बता दें। आज का दिन यानी 24 सितंबर और आज जो दिन मनाया जाता है श्रोताओ खास वो है, हमारे भारत की ही बात करते हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS। ये दिवस प्रतिवर्ष 24 सितंबर को पूरे भारत में मनाया जाता है। NSS की शुरुआत यानी राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस की जो स्थापना है वो 24 सितंबर 1969 को की गई थी। ये वर्ष महात्मा गांधी जी की जन्म शताब्दी का वर्ष था, जिन्हें समर्पित करते हुए इस योजना की शुरुआत जो है वो की गई थी। ये युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य छात्रों और युवाओं में सामुदायिक सेवा के माध्यम से उनके व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण करना है। श्रोताओं इसके साथ ही इस दिन का सामाजिक उत्तरदायित्व हम कहें तो वो है युवाओं में राष्ट्र निर्माण और सामाजिक समस्याओं के प्रति जिम्मेदारी की भावना जागृत करना। श्रमदान और समाज सेवा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना। क्या है इस दिन का मुख्य उद्देश्य और क्या क्या गतिविधियां इस दिन को मनाने से संबंधित की जाती हैं, इसके बारे में भी श्रोताओं कार्यक्रम में हम आगे जरूर बात करेंगे आपके साथ। फिलहाल कार्यक्रम में लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

श्रोताओ, सुहाग फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में तेरी रब ने बना दी जोड़ी। जी हाँ श्रोताओ, जोड़ियाँ अक्सर कहा जाता है कि जोड़ियाँ ऊपर बनती हैं, यानी जो भी कोई दंपत्ति है, पति पत्नी है इस धरती पर, उनकी जोड़ियाँ ईश्वर बनाता है। इंसान नीचे मिलजुल कर कई बार चतुराई के साथ भी रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मान्यताएं हैं, ये धारणाएं हैं हमारी भारतीय संस्कृति की, कि कहा जाता है कि हर पति पत्नी का जो रिश्ता है वो परमात्मा पहले ही ऊपर बना करके उन्हें भेजता है। बहुत अच्छी बात है श्रोताओं, हमारे संस्कारों की, हमारे धर्म और परंपराओं की। और उससे भी अच्छी बात है कि पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसमें प्यार तो है ही, एक दूसरे के ऊपर अटूट विश्वास ही उस रिश्ते को जो है वो और अधिक मजबूत बनाता है। ये अटूट प्यार और विश्वास का रिश्ता ही एक प्यारे से परिवार का निर्माण करता है, और उस परिवार में हमारे बुजुर्गों से मिले हुए हमारे संस्कार भी जब आगे आगे हमारे बच्चों और पीढ़ियों पे जाते हैं तो बहुत खुशी होती है कि हम अपने बुजुर्गों के उन परिवारों को, उन रीति रिवाजों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कई बार कुछ परिवारों में ये जो अटूट विश्वास और प्रेम का रिश्ता है, इसमें थोड़ा सा विश्वास अगर डगमगा जाता है, या यूं कहें कि लॉयल्टी किसी भी एक तरफ से कम होती है, तो अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार जो है वो बिखर जाता है। गलती भले ही किसी की हो, एक की, दूसरे की, या उन दोनों के बीच में आने वाले उस तीसरे की, उस तीसरे को जो एंटरटेन करता है, बस उसी समय हमारा रिश्ता जो है वो डगमगाता है, और सालों का हमारा प्यार और विश्वास उन कुछ पलों के सुपुर्द जो है वो हम कह सकते हैं कि पूरा जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए हम कोई संदेश नहीं दे रहे, प्रवचन नहीं कर रहे, लेकिन सभी जानते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता जो है वो बहुत ही कच्चे धागे की जैसे डोर होती है, उससे बंधा होता है। अगर उसमें प्यार है, अपनापन है, सही समय पर उस रिश्ते को हम प्यार से सींचते हैं, संजोते हैं, तो बहुत अच्छे से वो खिलता है। पूरा परिवार जो है उस रिश्ते की आड़ में हंसता है, खिलखिलाता है। वहीं अगर थोड़ा सा उसमें लॉयल्टी की कमी आ जाए तो बसा बसाया हंसता खिलता परिवार जो है वो बिखर कर रह जाता है। इसलिए ऐसा किसी परिवार में ना हो, हम यही दुआ करते हैं, और हर पति पत्नी एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे, एक दूसरे के लिए ईमानदार रहे, यही हमारी कामना है सभी दंपतियों के लिए। श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। आन मिलो सजना फिल्म से ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं, और गीत को गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। आनंद उठाइए कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत का, और यूं ही बने रहिए हमारे साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोता हो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। श्रोताओं, 24 सितंबर है आज और आज के दिन मना रहे हैं हम भारत में राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस यानी NSS दिवस। श्रोताओं, NSS का मुख्य आदर्श या यूं कहें कि मुख्य जो वाक्य है वो है मैं नहीं आप, नॉट मी बट यू। ये वाक्य स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई और समाज सेवा को प्राथमिकता देने का संदेश देता है। और NSS का लोगो कोणार्क के सूर्य मंदिर जो कि ओडिशा में है उसके रथ के पहिए पर आधारित है। इसका नीला और लाल रंग ऊर्जा, उत्साह और सक्रियता का प्रतीक है। श्रोताओं, क्या गतिविधियां रहती हैं मुख्य गतिविधियां NSS की? ये विशेष शिविर का आयोजन करते हैं खासकर गांव में और पिछड़े इलाकों में। 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन NSS द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही स्वच्छता और जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, सड़क सुरक्षा, साक्षरता, पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य शिविर जैसे अभियान और शिविरों का आयोजन NSS द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही रक्तदान और आपदा राहत, रक्तदान शिविर लगाना और राष्ट्रीय संकट या आपदा के समय सहायता प्रदान करना। श्रोताओं, NSS डे आज मनाया जा रहा है और इसके बारे में कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं। इसके बारे में कार्यक्रम में और भी बात करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में समय हो रहा है श्रोताओं आपको कार्यक्रम में एक और प्यारा सा गीत सुनवाने का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपने रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। श्रोताओं कार्यक्रम में आइए अब नजर डालते हैं आज के दिन के इतिहास पर, क्या कुछ खास घटा था आज के दिन। 1674 मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का दूसरा राज्याभिषेक तांत्रिक परंपरा के अनुष्ठानों के साथ संपन्न हुआ था। 1726 ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई कलकत्ता और मद्रास को चेन्नई में नगर निगम और महापौर की अदालतें स्थापित करने का अधिकार मिला था। आज ही के दिन 1859 प्रथम स्वाधीनता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले महान क्रांतिकारी नाना साहेब का निधन हुआ था। 2009 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर पानी की खोज की पुष्टि की थी। श्रोताओं ये थी इतिहास से जुड़ी कुछ खास घटनाएं। 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और कार्यक्रम में अब समय है प्रादेशिक समाचारों का। यूं ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपनेपन की।
1: मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संघवालिया ने

दृष्टि से महत्वपूर्ण लाहौल स्पीति की दो अहम सड़क परियोजनाओं को केंद्र सरकार व रक्षा मंत्रालय ने प्राथमिकता में किया शामिल।

0: बैंकिंग सुविधा का कल शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रदेश हाईकोर्ट अब देश का ऐसा 10वां उच्च न्यायालय बन गया है जहां अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण देखा जा सकेगा। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्याय केवल होना ही नहीं बल्कि दिखना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल के पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों को देखते हुए लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा आम लोगों, वकीलों व कानून के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से, देश सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ी रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। विशेष श्रृंखला में आज बात अटल इनोवेशन मिशन की। अटल इनोवेशन मिशन, जिसे वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था, देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य स्कूलों में समस्या के समाधान और नवाचार की सोच विकसित करना और विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, निजी क्षेत्र और MSME में उद्यमिता का एक सशक्त इकोसिस्टम तैयार करना है। वर्ष 2016 में आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से नई पीढ़ी को विज्ञान और अनुसंधान की ओर आकर्षित करने के लिए कदम उठाए हैं।
1: नई पीढ़ी में विज्ञान के प्रति आकर्षण, टेक्नोलॉजी के प्रति रिसर्च और इनोवेशन, और इसी के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए। और इसलिए तो मैं कहता हूँ लेटेस्ट एम टू इनोवेट। और जब मैं लेटेस्ट एम टू इनोवेट कहता हूँ तो मेरा एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक इरादा है कि इस एम के द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, पूरे देश में एक इकोसिस्टम तैयार हो। इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक सिलसिला चले।
0: भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर वरिष्ठ नेता श्रीकांत शर्मा पर भरोसा जताते हुए उन्हें हिमाचल भाजपा का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह को प्रदेश का नया सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं पच्छाद से विधायक रीना कश्यप को जम्मू कश्मीर भाजपा का सह प्रभारी बनाया गया है। हिमाचल भाजपा के प्रभारी के रूप में दोबारा नियुक्त किए गए श्रीकांत शर्मा पार्टी संगठन और चुनावी प्रबंधन का लंबा अनुभव रखते हैं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हिमाचल प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया था। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह का राजनीतिक सफर महिला मोर्चा से शुरू होकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा है। उधर पच्छाद से विधायक रीना कश्यप की नियुक्ति को हिमाचल भाजपा के लिए विशेष उपलब्धि माना जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से लाहौल स्पीति जिले की दो महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को केंद्र सरकार व रक्षा मंत्रालय ने प्राथमिकता दी है। विधायक अनुराधा राणा ने बताया कि सुमदो क्योटो कोरजोक मार्ग को प्राथमिकता एक में शामिल किया गया है। करीब 100 किलोमीटर लंबा ये मार्ग स्पीति के क्योटो को लद्दाख के कोरजोक क्षेत्र से जोड़ेगा और सीमावर्ती क्षेत्र का वैकल्पिक संपर्क मजबूत करेगा। अधिक ब्यौरे के साथ लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
2: लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा कि स्पीति की दो महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय की तरफ से प्राथमिकता मिली है। उन्होंने बताया कि सुमदो क्योटो कोरजक मार्ग को प्राथमिकता एक में शामिल किया गया है। वहीं वांगतु मुद अतरगु मार्ग को प्राथमिकता दो में शामिल किया गया है। ये किन्नौर और स्पीति को जोड़ेगा और इससे शिमला से काजा की दूरी करीब 100 किलोमीटर कम होने की उम्मीद है। विधायक अनुराधा राणा ने कहा कि ये मार्ग क्षेत्र के विकास, बेहतर संपर्क और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR_News_Shimla और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार, बाकी के समाचार इस अंतराल के बाद।
3: दीदी, आजकल HPV वैक्सीन की काफी बात हो रही है, ये है क्या?
4: माया, ये वैक्सीन बेटियों को भविष्य में सर्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव में मदद करती है। 14 से 15 वर्ष तक की लड़कियों को सरकार ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगा रही है।
3: अच्छा, और अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है?
4: इसी वर्ष 28 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और तब से अब तक हजारों लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं।
5: अपनी बेटी के HPV टीकाकरण के लिए आशा, ANM या CHO से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित।

0: नगर निगम हमीरपुर ने शहर को स्वच्छ और कूड़ा मुक्त बनाने के उद्देश्य से एक माह का स्वच्छता जागरूकता अभियान शुरू किया है। ये अभियान 17 सितंबर से शुरू हुआ जो 17 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान के तहत लोगों को स्वच्छता के महत्व के साथ घरों और दुकानों से निकलने वाले कूड़े के उचित निस्तारण की जानकारी भी दी जा रही है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: 17 सितंबर से शुरू हुआ ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान नगर निगम के कर्मचारी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न फेंकने के लिए प्रेरित करेंगे। नगर निगम ने शहर में ऐसे 5 से 6 हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं जहां अक्सर लोग खुले में कूड़ा फेंकते हैं। इन स्थानों पर अभियान के दौरान विशेष निगरानी रखी जाएगी। निगम का प्रयास लोगों को समझाकर सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न फेंकने की आदत को बदलना है। इसके बावजूद यदि लोग आदत नहीं बदलते हैं तो हॉटस्पॉट वाले स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी है। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। कांगड़ा जिला की महिलाओं के लिए आत्मसम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नई पहल शुरू हुई है। पालमपुर के सुंगल में मिशन शक्ति के तहत जिला कांगड़ा के पहले शक्ति सदन यानी स्वाधार गृह का शुभारंभ किया गया है। ये सदन कठिन परिस्थितियों से गुजर रही महिलाओं को न केवल सुरक्षित आश्रय देगा बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का भी काम करेगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता।
2: योजना के तहत जिला कांगड़ा का ये पहला स्वाधार गृह है जहां विभिन्न पात्र महिलाएं सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर पाएंगी। सदन में प्रत्यागता, विधवा, तलाकशुदा और बेघर महिलाओं के साथ साथ घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न या अन्य प्रकार के शोषण से प्रभावित महिलाओं को आश्रय और आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। मानव तस्करी से मुक्त कराई गई, प्राकृतिक आपदा या सामाजिक संकट से प्रभावित तथा बिना आश्रय के जेल से रिहा हुई महिलाओं को भी यहां सहायता मिल सकेगी। सबकी सदन जरूरतमंद महिलाओं के लिए सुरक्षित छत के साथ साथ नई शुरुआत, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार बनेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपुल शर्मा।
0: प्रदेश के अधिकांश भागों में आज दिन की शुरुआत खिली धूप के साथ हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने आज से राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है जिसके चलते आज व कल राज्य के कुछ स्थानों में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं विभाग ने प्रदेश में 26 से 28 सितंबर को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला के शब्द हैं, अनुबंध कर्मचारियों से अतिरिक्त वेतन की रिकवरी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। पंजाब केसरी और दिव्य हिमाचल ने खबर को लगभग एक जैसा शीर्षक दिया है, घेपन झील की स्थिति खतरनाक, 5 मिनट में मचा सकती है भारी तबाही। दैनिक भास्कर के अनुसार पर्यटन स्थलों पर एंट्री टैक्स लगाने की तैयारी। दैनिक जागरण का कहना है, HRTC के बेड़े में आएंगी 350 नई बसें, पुरानी JNNURM बसें हटेंगी। पेंशनरों को अक्टूबर में मिलेगा लंबित एरियर, हिमाचल दस्तक की एक खबर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्च न्यायालय की कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू करने वाला हिमाचल बना देश का 10वां उच्च न्यायालय। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया ने किया शुभारंभ। वरिष्ठ भाजपा नेता श्रीकांत शर्मा को एक बार फिर मिली प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह होंगी सह प्रभारी। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लाहौल स्पीति की 2 अहम सड़क परियोजनाओं को केंद्र सरकार व रक्षा मंत्रालय ने प्राथमिकता में किया शामिल। नगर निगम हमीरपुर ने शहर को स्वच्छ और कूड़ा मुक्त बनाने के उद्देश्य से एक माह का स्वच्छता जागरूकता अभियान किया शुरू। और प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 26 से 28 सितंबर तक बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ और सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। श्रोताओं कार्यक्रम में समाचारों के बाद अब आपको लिए चलते हैं सीधे सीधे मनोरंजन की ओर। जी हाँ, ढोल नगाड़ों की आवाज़ तो आपने सुन ही ली होगी। गीत सुनवा रहे हैं आपको राम लखन फिल्म से। गीत को गाया है मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल और साथियों ने। आनंद उठाइए इस प्यारे से गीत का रेडियो गुंजन धर्मशाला से और यूं ही बने रहिए हमारे साथ।

0: श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। श्रोताओं, मना रहे हैं आज हम NSS डे, जी हां, राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस, और डॉक्टर VKRV राव को इस दिन का जो है वो जनक माना जाता है। डॉक्टर विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराज जो तत्कालिक केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, 24 सितंबर 1969, और इसकी जो शुरुआत है वो महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी वर्ष यानी को 1969 के अवसर पर की गई थी। और इस दिवस का उद्देश्य है, श्रोताओं, सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना। इक्यानवे दशमलव दो मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और अब गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम का अगला गीत, आप सबकी नजर आप सभी के रेडियो सेट्स पर। श्रोताओं,
1: Tango, Charleston, Polka, no.

श्रोताओं, मेरी जंग फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार, जावेद जाफरी, जानकी और साथियों की आवाज़ों में। और श्रोताओं, ये गीत 80 के दशक का वो सुपरहिट गीत था जिसे डिस्को में, खासकर जो है वो डिस्को में या डिस्को करने के लिए इस गीत को बजाया जाता था और खूब मौज मस्ती इस गीत की वजह से लोग जो हैं वो करते थे। श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और कार्यक्रम में आज हम आपसे बात कर रहे हैं एनएसएस दिवस के बारे में। जी हाँ, राष्ट्रीय एनएसएस दिवस जो है वो आज मनाया जा रहा है। और किस तरह से एनएसएस कार्य करता है, एनएसएस भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की एक केंद्रीय योजना है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ समाज और समुदाय की सेवा करने का व्यावहारिक अनुभव देना है। एनएसएस का मूल विचार है सेवा के माध्यम से शिक्षा, एजुकेशन थ्रू सर्विस। और इसका बहुत ही प्यारा सुंदर वाक्य है, नॉट मी बट यू, यानी खुद से पहले आप, यानी सिर्फ अपने बारे में सोचने की बजाय समाज और दूसरों के हितों के बारे में सोचना, उनकी मदद करना और उन्हें महत्व देना। श्रोताओं, एनएसएस की शुरुआत 1969 में 37 विश्वविद्यालयों के लगभग 40,000 स्वयंसेवकों के साथ हुई थी। बाद में इसका विस्तार पूरे देश में हुआ। वर्तमान में स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी इसके माध्यम से सामुदायिक सेवा में भाग लेते हैं। एनएसएस के बारे में कार्यक्रम में आगे और भी बातचीत करेंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम में फिलहाल आपको लिए चलते हैं मनोरंजन की ओर। सुनवा रहे हैं आपको कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत, तेजाब फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं अलका याग्निक की आवाज में। आनंद उठाइए इस प्यारे से गीत का और यूं ही बने रहिए हमारे साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: पर।
1: नमस्कार।
0: कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नते।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ कार्यक्रम में बहुत खास दिवस के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, NSS डे के बारे में कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं।

श्रोताओं, एनएसएस के जो स्टूडेंट्स होते हैं या हम कह सकते हैं कार्यकर्ता होते हैं, वो किस तरह से कार्य करते हैं वो हमने आपको बताया। जैसे कि स्वच्छता और पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम, गांव और सार्वजनिक स्थानों की सफाई करना, कचरा प्रबंधन, स्वच्छता अभियान, पौधारोपण, जल संरक्षण, मिट्टी और जल संसाधनों के संरक्षण से जुड़े कार्य। इसके साथ ही स्वास्थ्य और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान, पोषण संबंधी जागरूकता, स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल, विभिन्न स्वास्थ्य अभियानों में सहयोग, रक्तदान शिविर लगवाए जाते हैं। एनएसएस के प्रमुख राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य जागरूकता गतिविधियां मुख्य रूप से शामिल हैं। श्रोताओं, इसके अलावा शिक्षा से जुड़े कार्य, साक्षरता कार्यक्रमों में सहयोग, बच्चों के लिए शैक्षिक गतिविधियां, कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सहायता, डिजिटल जागरूकता, कानूनी और उपभोक्ता जागरूकता। गांव के विकास में सहयोग, रास्तों और नालियों की सफाई करना, तालाबों और कुओं की सफाई करना, स्वच्छता सुविधाओं के प्रति जागरूकता, जल संरक्षण, पर्यावरण सुधार, स्थानीय विकास गतिविधियों में सहयोग। और आपदा के समय सहयोग, एनएसएस स्वयं सेवकों को आपातकालीन परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के समय समुदाय की सहायता करने की क्षमता विकसित करने के लिए भी तैयार किया जाता है। आधिकारिक दिशा निर्देशों में राहत और पुनर्वास कार्यों में स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग किया जाता है। श्रोताओं, एनएसएस केवल सेवा कार्यों तक सीमित नहीं है। इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव, लोकतांत्रिक मूल्यों और नेतृत्व क्षमता का विकास करना भी शामिल है।

एनएसएस द्वारा किए गए कार्य और इनके द्वारा और क्या राष्ट्रीय कार्य किए जाते हैं उसके बारे में भी श्रोताओं कार्यक्रम में आगे हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल कार्यक्रम में समय हो रहा है आपको एक और प्यारा सा गीत सुनवाने का, तो आइए चलते हैं गीत की ओर।

श्रोताओं हैं, आप हैं इस समय 91.2 मेगाहर्ट्स रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, और कार्यक्रम में आगे सुनवा रहे हैं आपको अग्नि फिल्म का गीत अलका याग्निक सुरेश वाडकर की आवाज़ में।

श्रोता 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। श्रोताओ कार्यक्रम में अब बात करते हैं एनएसएस के विशेष राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बारे में। एनएसएस स्वयंसेवकों को कुछ राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में भी भाग लेने का अवसर मिलता है। इनमें नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, राष्ट्रीय युवा कार्यक्रमों से जुड़ी गतिविधियां, साहसिक कार्यक्रम और रिपब्लिक डे परेड कैंप जैसे अवसर शामिल हैं। नेशनल इंटीग्रेशन कैंप का उद्देश्य अलग अलग राज्य के युवाओं को साथ लाकर भारत की सांस्कृतिक विविधता को समझना और सामाजिक एकता की भावना को मजबूत करना है। इसके साथ ही श्रोताओं एनएसएस का उद्देश्य केवल सड़कें साफ करवाना, पेड़ पौधे लगवाना ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा विचार है। विद्यार्थी किताबों में समाज के बारे में पढ़े ही नहीं, बल्कि समाज के बीच जाकर उसे समझें भी। एनएसएस के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है समुदाय की जरूरतों को समझना, समस्याओं को पहचानना और उनके समाधान में भाग लेना। सामाजिक और नागरिक जिम्मेदारी विकसित करना, नेतृत्व क्षमता विकसित करना, टीम में काम करना सीखना, लोगों को अपने साथ किसी अच्छे कार्य के लिए जोड़ना, आपदा जैसी परिस्थितियों से निपटने की क्षमता विकसित करना, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना। श्रोताओ एनएसएस विद्यार्थियों को केवल अच्छा विद्यार्थी बनने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे एक जिम्मेदार नागरिक बनने का अनुभव देता है। और शायद इसी भावना को उसका आदर्श वाक्य सबसे अच्छी तरह से व्यक्त करता है, नॉट मी बट यू, स्वयं से पहले आप। यानी मेरी शिक्षा तभी सार्थक है जब उसका लाभ मेरे पूरे समाज तक भी पहुंचे। श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब कार्यक्रम में आनंद उठाइए कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत का। गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म अजनबी से।

श्रोताओ, आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और आप श्रोताओ, समय है आपसे विदा लेने का, इसी वादे के साथ कि बहुत जल्द आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला। और अब मैं चली।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: क्या हुआ? क्या हुआ?
1: सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
3: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते हैं, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालें क्या?
4: अरे ठहरिए ठहरिए, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसे ऐसी बातें कर रहे
5: हैं। उठाओ उठाओ, अस्पताल ले जाओ भाई।
4: कमाल के हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं, 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवी और सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
6: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
7: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
8: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे। कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे। आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया। क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला। आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु, वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा आप क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
9: कुछ मीठा बोलो।
10: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
9: मैं खाने की बात कर रही थी।
10: एक खाओ कर, गुलाब जामुन मंगा दो।
9: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना। तो
11: क्या?

अरे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी

0: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
1: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
0: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालें क्या?
2: अरे ठहरिए ठहरिए, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे
3: हैं। अस्पताल ले जाओ भाई,
2: संभाल के। हाँ इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं, 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। तो समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवी और सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
0: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
4: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
5: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
6: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे। कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मर गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे, आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया, क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला, आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले,

0: ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सकें। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे पर...
1: कुछ मीठा बोलूं?
2: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
1: मैं खाने की बात कर रही थी।
3: एक खाओ कर गुलाब जामुन मंगा दो।
1: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना तो।

नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और अब समय है दोस्तों कार्यक्रम हमारी सेहत का। तो दोस्तों ये कार्यक्रम हमारी सहयोगी संस्था ऑर्गन इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जीवन एक अनमोल उपहार। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 मेगाहर्ट्ज पर।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज के कार्यक्रम में ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा हमारे साथ हैं और आज हम एक बार फिर से एक और प्रेरणा से भरी हुई कहानी लेकर आए हैं और वो हमें बहुत ही खास मेहमान से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए डॉक्टर शर्मा से बात करते हैं।
2: नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ और हमेशा की तरह मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको हमेशा ऐसे लोगों से मिलवाने की कोशिश करते हैं जो कि अंगदान या त्वचादान या देहदान से जुड़े हुए काम कर रहे होते हैं और आपको उनका महत्व बताने की कोशिश करते हैं कि अंगदान, देहदान या त्वचादान का या नेत्रदान का महत्व कितना ज्यादा होता है और किसी की लाइफ बिल्कुल नर्क से स्वर्ग बन सकती है, किसी की लाइफ सीधा सीधा बच सकती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हैं। इंदौर की डॉक्टर शोभा चमनिया जी, जो कि मध्य प्रदेश की पहला स्किन बैंक स्थापित करने वाली महिला हैं, आज हम उनके साथ बातचीत करने वाले हैं और त्वचा दान की महत्व को जानने वाले हैं इस शो के माध्यम से, इस एपिसोड के माध्यम से। डॉक्टर शोभा जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार।
3: नमस्कार डॉक्टर सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए।
2: जी डॉक्टर चमनिया, आप मेरे से बहुत ज्यादा सीनियर हैं, सो सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा क्योंकि आप जिस बैच से हैं और जिस ईयर के बैच से हैं उस टाइम पर बहुत ही कम, जितना कि मैं जानता हूं, बहुत ही कम फीमेल सर्जन हुआ करती थी और वो भी बर्न सर्जन या प्लास्टिक सर्जरी में बहुत ही कम महिलाएं आगे आती थी। मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन हमारे श्रोताओं को दीजिए।
3: बर्न के मरीजों की केयर करना, मुझे मेरे रेसिडेंसी में ही इसके बारे में बहुत अट्रैक्शन हुआ था। मैंने सर्जरी इसलिए ज्वाइन की कि हम लोग इंटर्नशिप में सब विशेषज्ञता में रोटेट करते हैं एक साल के लिए, तो उस जमाने में इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटीज नहीं होती थी और सर्जरी मुझे एक ऐसी ब्रांच समझ आई थी कि जिसमें हम लोग जो कुछ भी सोच रहे हैं कि इस मरीज को ये बीमारी है तो उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, क्योंकि हम उसे ऑपरेट करके पक्का कर लेते हैं कि हम जिस सोच पे थे वो सही रास्ता था या हम गलत थे। मुझे बहुत स्ट्राइक कर रही थी जब मैं रेसिडेंट बनना चाह रही थी और इसलिए मैंने सर्जरी विषय चुना था। आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं कि उस समय में महिलाएं ये विषय नहीं चुनती थी और मुझे बहुत समय तक मैं इस डिपार्टमेंट में अकेले ही रही।
2: जी आपने कौन से ईयर में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पास की थी मैम?
3: 1978।
2: और कहाँ से की थी?
3: भोपाल गांधी मेडिकल कॉलेज।
2: अच्छा, तो आप बेसिकली शुरू से इंदौर की ही रहने वाली रही हैं या कहीं बाहर से आप आए इंदौर में?
3: मैंने भोपाल में अपना पूरा कॉलेज एजुकेशन किया, MBBS और MS दोनों भोपाल से हुआ और मेरे स्कूल की शुरुआत भी भोपाल से हुई थी। मेरे पिताजी एक ट्रांसफरेबल जॉब में थे तो मैं पूरे मध्य प्रदेश में घूमी, फाइनली भोपाल में पास किया। भोपाल से एक वर्ष के लिए मैं बम्बई में थी और उसके बाद इंदौर में, तो 1979 से अब तक इंदौर में एक ही अस्पताल में काम करती हूँ, वो है चैत्राम अस्पताल।
2: मतलब पूरी लाइफ आपने कभी जॉब चेंज नहीं की?
3: नहीं।
2: डॉक्टर, आप हमें ये बताइए कि आपने जो मध्य प्रदेश में मिडिल इंडिया का पहला स्किन बैंक जो आपने लॉन्च किया, तो सर्जरी की रेसिडेंसी से एंड देन स्किन बैंक की को इनिशिएट करना, ये इनिशिएटिव लेना, यहाँ तक की जर्नी कैसे आप इंस्पायर हुई इस चीज के लिए?
3: जब मैं सर्जन बन गई तो मैं खोज रही थी कि मैं क्या करना चाहूँगी। रेसिडेंसी में मैं बहुत अच्छे से डिटेल्स में बर्न के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया करती थी, पर मुझे नहीं मालूम था कि मैं ये स्पेशलिटी चूज करूँगी।
2: जी,
3: यंग सर्जन को बहुत नई चीज़ों की तरफ आकर्षण होता है और टेक्नोलॉजी तो हर यंग इंसान को आकर्षित करती है। मैं भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हुई थी, पर मुझे ये समझ में आया था कि मैं हर जगह जहाँ बहुत से मेल कॉलीग्स भी लाइन में हैं, मैं उस कतार की सबसे आखिर में रहूँगी, क्योंकि लेडीज फर्स्ट प्रोफेशनल करियर में जहाँ आप अकेले हैं कभी भी नहीं सुना जाता है। तो मैंने फिर ये ढूंढने की कोशिश करी कि ऐसी कौन सी ब्रांच है जो मेजॉरिटी मेन नहीं लेना चाहेंगे, आदमी सर्जन जो है मेल सर्जन्स वो नहीं करना चाहेंगे। और वो मैंने बहुत सोच के और बहुत ऑब्जर्व करके समझ में आया कि बर्न्स में बहुत कम लोग उस समय रुचि रखते थे, ये 1980 की बात है। तब मैंने अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से पूछा था क्या मैं बर्न्स कर सकती हूँ, तो उन्होंने बिल्कुल तपाक से जवाब दिया था आप अभी से इस पल से बर्न करने लगे, और तब से मैं इसमें आ गई। और क्योंकि ये मैंने अपने लिए ही प्रोफेशन चूज़ किया था, तो फिर मैं इसमें पूरी तरह से इंटरेस्ट लेके उसमें पैशनेटली उसको समझने के लिए और उसे अच्छे से करने के लिए प्रेरित थी अपनी ड्राइव से और जिन लोगों ने जो मेरे मेंटर बने उनकी उनके डायरेक्शन से। और फिर मेरी मुलाकात डच स्किन बैंक के सीईओ से हुई जो कि इंडियन थे, हमारी मुलाकात ब्राज़ील में एक कॉन्फ्रेंस में हुई
2: जी।
3: और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि आप टच स्किन बैंक आके देखिए हम लोग कैसा काम कर रहे हैं
2: जी।
3: मैं लौटते अपने रिटर्न फ्लाइट में वहाँ रुक के और मैंने ये स्किन बैंक देखा तो मुझे लगा ये तो बहुत ही आसान प्रक्रिया है और हम लोग आसानी से कर सकते हैं और इससे हमारे मरीज के इलाज में बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये 2005 की बात है जब मैंने विजिट किया, और 2011 में डच स्किन बैंक ने ही सपोर्ट करके उन्हीं के कोलैबोरेशन में हम लोगों ने स्किन बैंक शुरू करी। पर स्किन बैंक की सारी सफलता हम लोगों की नहीं है, ये सफलता दूसरे जो समूह हम लोगों से जुड़े
2: जी। क्या आप उन समूहों को का नाम लेना चाहेंगे यहाँ पर
3: जी? ये इसमें मुस्कान ग्रुप, इनके इंटरनेशनल आई बैंक भी इनके साथ हैं, रोटरी क्लब जिन्होंने बहुत पब्लिक अवेयरनेस के लिए प्रोत्साहन दिया, बहुत से प्रोग्राम किए, और उन लोगों का भी बहुत सहयोग है।
2: मैम यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे और ब्रेक के बाद हम अपने मेन टॉपिक यानी कि स्किन डोनेशन या त्वचा दान पर बात करेंगे और अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
1: ब्रेक से पहले आइए सुनते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का अंग दान से जुड़ा अपना व्यक्तिगत अनुभव।
4: कहते हैं जान है तो जहान है, बात सच है, लेकिन जब जान नहीं रही तो क्या हम किसी और को जिंदगी दे सकते हैं? जी हाँ, हम जाने के बाद अपनी आंखें किसी को दे सकते हैं, तो हमारी आंखों से वो दुनिया को देख सकता है, हम अपने दूसरे ऑर्गन दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं, और किसी और को ज़िंदगी मिल जाएगी। मेरी वाइफ मेधा, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और 13 साल उसने ज़िंदगी और गुजारी। ये तभी हो पाया कि जिसने हार्ट डोनेट किया था उसको ये अवेयरनेस थी कि मेरे जाने के बाद मैं किसी और को एक्स्ट्रा ज़िंदगी दे सकता हूँ। अगर ये चीज़ हम आप सब समझ जाएं, तो ना जाने कितने लोगों का संसार खूबसूरत हो सकता है हमारे जाने के बाद। हिंदुस्तान में हर साल करीब 5 लाख लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको वो ऑर्गन नहीं मिलते जिससे कि उनकी ज़िंदगी बच सकती है। आप ऑर्गन डोनेट करके हीरो बन सकते हैं। हीरो बनने के बहुत से तरीके हैं, ये भी एक तरीका है हीरो बनने का कि ज़िंदगी भर कोई आपकी बातें करेगा। एक व्यक्ति 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है, 8 लोगों को आप ऑर्गन डोनेट करते हैं केवल एक बॉडी से, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो सब लोगों के तो आप हीरो हो गए। तो कितना अच्छा होगा कि इस बात को समझें और लोगों को समझाएं। हमारा मकसद यही है कि ये खबर सब तक पहुंचाएं, सब इस बात को जानें कि एक आदमी 8 लोगों की जान बचा सकता है, उन 8 लोगों के आप हीरो बन जाएंगे। तो आज ही फ्लैश करिए और हमारा साथ दीजिए।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम। दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम। जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्ते साथियों, तो हम छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शोभा चमनिया जी से, जो कि इंदौर में स्किन बैंक की HOD हैं और चोइथराम हॉस्पिटल में बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी में भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। सो आज हम उनके साथ बात करके स्किन डोनेशन का महत्व जानने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर चमनिया, आप हमें ये बताएं हमारे श्रोताओं को कि स्किन डोनेशन क्या होता है, त्वचा दान क्या होता है और इसका महत्व क्या है, क्यों ये किया जाता है?
2: त्वचा दान हमारी त्वचा की 1/10 ऑफ द लेयर, 1/10 भाग जो त्वचा का है जाता है। इसका मतलब है कि बाकी जो थिक पार्ट है त्वचा का वो वहीं पर रहता है। तो जब हम त्वचा दान करते हैं तो हमारे अंदर के कोई भी अंग बाहर नजर नहीं आते हैं, यानी अगर हम पैरों से निकाल रहे हैं तो मांसपेशी नहीं दिखती है, और अगर हमने पीठ या पेट से ली है तो वहां से अंदर के अंग नहीं आते हैं। यह प्रश्न लोगों के मन में बहुत रहता है कि क्या हमने त्वचा दान करी तो हमारे अंग सब बाहर बिखर जाएंगे। इसलिए मैंने ये स्पष्ट करने की कोशिश करी कि वे अंग नहीं देखे जाएंगे। त्वचा दान हमेशा उन जगह से होता है जहाँ कि हम कपड़ों से जिस अंग को ढक सकते हैं, जैसे कि पैर है, पीठ है, यहाँ से हम लोग लेते हैं, उसके बाद उसको हल्की सी बैंडेज से कवर कर देते हैं और उसके बाद कपड़े पहना दिए जाते हैं, जिससे कि वो बिल्कुल भी नजर नहीं आते हैं कि इनका कोई दान हुआ है।
1: जी,
2: इसका महत्व क्या है? यह एक टेम्पररी ड्रेसिंग है। टेम्पररी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे कि गुर्दा दान है या नेत्र दान है, ये परमानेंटली हमेशा के लिए वहां रहता है और दवाइयों द्वारा उसका दूसरे के शरीर से परित्यक्त होना यानी रिजेक्ट होना उसको रोका जाता है। तो वो फंक्शनल होता है, और जैसे गुर्दा है तो वो गुर्दे का काम करता है, यूरिन बनाएगा और सारे जो शरीर के टॉक्सिन्स हैं उनको निकालेगा। ये फंक्शनल ऑर्गन होता है और सालों तक चलता है। तो लिवर ट्रांसप्लांट भी इसी तरह का, हार्ट ट्रांसप्लांट भी इसी तरह का है। पर त्वचा दान जो है वो केवल 2 से 3 सप्ताह तक शरीर में, दूसरे के शरीर में हम लोग किसी घाव के ऊपर प्रत्यारोपित करते हैं। प्रत्यारोपित करने का कारण ये है कि उसमें से जो पानी का रिसाव हो रहा है घाव से वो रुक जाता है, तो मरीज को पानी और उसके साथ के जो लवण रहते हैं उनकी जरूरत कम पड़ती है। और बहुत दर्द होता है इस घाव में, जले हुए घाव एक सबसे ज्यादा दर्द वाली बीमारी
1: जी।
2: तो इसके दर्द को एकदम कम करता है अगर आपने किसी दूसरे की त्वचा से उसको ढक दिया, और ढक देने से वो घाव भर जाता है, कवर हो जाता है, ढक जाता है, मतलब भर तो नहीं जाता है पर फिलहाल टेम्पररीली वो बंद हो जाता है, तो इन्फेक्शन का भी खतरा कम हो जाता है। कीटाणु, यदि हमारे चमड़ी में कोई भी क्रैक है तो उससे कीटाणु अंदर जाते हैं। हमारी चमड़ी में कोई क्रैक नहीं है तो हम लोग कितनी भी इन्फेक्टेड चीज पकड़ लें हमें इन्फेक्शन नहीं होगा
1: जी।
2: तो ये स्किन डोनेशन की होती है, वो जले मरीज के लिए बहुत आरामदेह और जीवनदायी होती है
1: जी।
2: क्योंकि उसका जो कठिन समय है वो इससे गुजर जाता है, उसके बाद मरीज की खुद की चमड़ी प्रत्यारोपित की जाए।
1: क्या सिर्फ जले मरीजों के ही काम में आती है स्किन जो डोनेटेड की जाती है, या फिर कोई और भी बीमारियां हैं या कोई और भी कंडीशंस हैं जहां पर स्किन डोनेटेड स्किन का यूज किया जाता है?
2: आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया क्योंकि मैं अब तक केवल जले मरीजों के बारे में ही बता रही थी
1: जी।
2: नहीं, इस तरह के घाव कुछ त्वचा रोग में भी होते हैं, जिसमें कि पूरी स्किन के जो ऊपरी तह रहती है वो निकल जाती है और उसमें भी मरीज को इन्फेक्शन का खतरा होता है और बहुत दर्द होता है। तो उस तरह की बीमारियों में भी हम लोग ये त्वचा लगाते हैं
1: जी।
2: और बेड सोर यानी बिस्तर में पड़े रहने से जो पीठ में घाव हो जाते हैं, वीनस अल्सर्स, वेरिकोज वेन बीमारी होती है लेग्स की, उसमें भी घाव हो जाते हैं, कई बार बहुत बड़े बड़े घाव हो जाते हैं उसमें लगाते हैं। और डायबिटिक फूड नॉन हीलिंग अल्सर्स, कोई भी क्रॉनिक अल्सर है जो किसी भी तरीके से भर नहीं रहा है, उसको भी त्वचा लगा के कुछ समय के लिए उसका इन्फेक्शन कंट्रोल किया जा सकता है, घाव की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है।
1: शोभा जी, मरने के कितनी देर बाद तक हम स्किन डोनेट कर सकते हैं और क्या सामान्य मृत्यु या फिर कोई हॉस्पिटल में अगर है और उसकी मृत्यु हुई है, सिर्फ उस दशा में ही स्किन का दान किया जा सकता है या फिर घर पे जब किसी की मृत्यु होती है तब भी स्किन को दान किया जा सकता है?
2: बहुत अच्छे प्रश्न है। सबसे अच्छा रहता है यदि हॉस्पिटल में मृत्यु हुई है तो डेथ सर्टिफिकेट मिलना बहुत आसान होता है, और जिनको जिस टीम को ये त्वचा दान करना है वो टीम बहुत आसानी से वहाँ उपलब्ध रहती है, और हॉस्पिटल में सारी चीज़ें एक प्रॉपर लेवल पे रहती हैं जिससे कि काम करने में बहुत सुविधा रहती है
1: जी।
2: तो कोविड के समय में हम लोगों ने स्किन बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ये निर्णय लिया था कि केवल अस्पताल में ही जो डेथ्स होंगी और जो कोविड नेगेटिव होंगी उनकी ही स्किन डोनेशन होगी, क्योंकि हमारे टीम को कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, उनके बचाव के लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया था। अब जब कोविड कम हो गया है अपने देश में तो हम लोग RT-PCR या रैपिड एंटीजन की रिपोर्ट है तो घर पर भी जाके ले रहे हैं
1: जी। कोविड के अलावा भी कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें स्किन डोनेशन की मनाही है या फिर स्किन डोनेशन नहीं की जा सकता?
2: जी, हम लोग जो रक्त से बीमारियां होती हैं जैसे कि इन्फेक्शन में, सेप्टिसीमिया में कीटाणु हो सकते हैं, जॉन्डिस एक दूसरे से जा सकती है, HIV एड्स की बीमारी भी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या स्किन में कोई भी इन्फेक्शंस हो या कैंसर हो, उस तरह की कंडीशन में हम लोग त्वचा दान स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हम किसी भी तरीके से ये नहीं चाहते हैं कि जो रिसिपिएंट हो जिसे हम लोग स्किन लगाएंगे उसे इस त्वचा से कोई भी नुकसान पहुंचे
1: जी। और मृत्यु के कितने देर बाद तक स्किन को लिया जा सकता है, दान किया जा सकता है?
2: सबसे अच्छा तो पहले 6 घंटे में ही दान हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है, पर यदि बॉडी को बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा है, टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन किया हुआ है तो 24 घंटे तक हम लोग त्वचा दान स्वीकार कर सकते हैं
1: जी। और ये अस्पताल में अगर मृत्यु नहीं हुई है, घर पे हुई है तो भी त्वचा दान किया जा सकता है
2: जी। उसके लिए वो डेथ सर्टिफिकेट लगता है और उसमें हम लोगों को 1 घंटा करीब हमारा रिस्पांस टाइम रहता है उनके एड्रेस पे पहुंचने का, और करीब 1 घंटा प्रोसीजर में लग जाता है। फ्यूनरल से 2.5 घंटे पहले अगर हम लोगों को नोटिस दिया जाए तो काम करने में सुविधा होती है।
1: और दान करने के बाद जो इसके की बैंकिंग की हम बात करें अगर, तो कितने समय तक इसकी बैंकिंग की जा सकती है, इसको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है?
2: इसे 5 वर्ष तक 4-8 डिग्री सेंटीग्रेड के जो नॉर्मल घरों में फ्रिज होते हैं उसमें रखा जा सकता है। इसे रखने का एक सॉल्यूशन होता है जो 85% ग्लिसरॉल रहता है, इसमें प्रिजर्व करते हैं
1: जी। जी मैम,
2: सिर्फ ज़रूरत हम लोगों को इतनी अधिक होती है कि हमने कभी भी कुछ महीनों से अधिक बैंक में स्किन रखी ही नहीं,
1: यूटिलाइज कर
2: लेते हैं।
1: मैम, अगर हम देखें तो हमारे यहाँ अस्पतालों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या हर अस्पताल में स्किन डोनेशन हो सकता है या फिर जिन अस्पतालों में स्किन बैंक है सिर्फ वहीं स्किन डोनेशन किया जा सकता है?
2: नहीं, स्किन डोनेशन तो सब जगह किया जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी किया जा सकता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी किया जा सकता है, यानी गांव में भी किया जा सकता है। ये इस टीम को ट्रेन करना होता है और ये कलेक्शन सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर कलेक्ट करके और फिर स्किन बैंक में वो स्किन को प्रॉपरली कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए भेज सकते हैं और स्किन बैंक में उसे बैंक किया जा सकता है। इंसान की त्वचा दान करने की इच्छा को इस तरह से पूरा किया जा सकता है।
1: जी, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक फिर से लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आके अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम। दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम। जीवन एक अनमोल उपहार।
1: छोटे से वृत्त अंतराल के बाद हम वापस आ गए हैं अपने इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। हम डॉक्टर शोभा चमनिया जी से बात कर रहे हैं जो कि इंदौर में चोइथराम हॉस्पिटल में स्किन बैंक की HOD हैं और बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी की HOD हैं। हम बात कर रहे हैं स्किन डोनेशन के बारे में, स्किन डोनेशन के महत्व को जानने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर चमनिया, हम बात कर रहे थे स्किन डोनेशन डेथ के बाद होता है, तो सिर्फ डेथ के बाद ही स्किन डोनेट किया जा सकता है या अगर जिंदा रहते हुए हम डोनेट करने की कोशिश करें तो हम ये कर सकते हैं?
2: जिंदा रह के भी डोनेट किया जा सकता है। जैसे कि आम तौर पे पहले जब ये बैंक्स नहीं थे तो छोटे बच्चे को यदि ज़्यादा जल गया है तो माँ या पिताजी कोई भी स्किन डोनेट कर देते थे। सरफेस एरिया के हिसाब से बहुत थोड़ा सा, एक थाई से अगर हमने पेरेंट की स्किन ली तो वो बच्चे को बहुत अच्छे से कवर कर लेती थी
1: जी।
2: तो ये बहुत कॉमनली होता था और अभी भी जिन स्टेट्स में स्किन बैंक की सुविधा नहीं है वहाँ पर अभी भी कुछ लोग लाइव डोनेशंस, लाइव रिलेटेड डोनेशंस करते हैं।
1: मैम, इंडिया में ये सिनेरियो क्या है, जो स्किन बैंक्स हैं वो कितनी जगह पर, कौन कौन सी सिटीज़ में हैं, अगर इसके बारे में कोई जानकारी आप दे पाएं?
2: हमारे यहाँ 15 स्किन बैंक्स हैं और ये शुरू हुए थे, सबसे पहला स्किन बैंक साइन हॉस्पिटल मुंबई में शुरू हुआ था। ये प्रिजर्वेशन का भी तरीका इनका क्रायो प्रिजर्वेशन होता था जो कि स्किन को वायबल रखता है जिससे कि वो लाइव रहती है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है। हम लोगों ने अब शुरू किया है वो ग्लिसरॉल प्रिजर्व स्किन है। टेक्निकली साइंटिफिकली ये स्किन वायबल नहीं रहती है और ये हम लोग केवल टेम्प्ररी ड्रेसिंग के रूप में ही यूज़ कर सकते हैं, ये कभी भी बॉडी में परमानेंटली नहीं रह जाती है, ऐसा ऐसा अनुमान है। पर मैंने कई बार देखा है कि इससे स्किन कवर हो जाती है। ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ, फिर दूसरा भी स्किन बैंक मुंबई में ही शुरू हुआ, फिर उसके बाद तीसरा इंदौर में था और उसके बाद महाराष्ट्र में कई जगह और दक्षिण भारत में बहुत जगह खुली। PGI चंडीगढ़ में नॉर्दर्न पार्ट में वहाँ शुरू हुआ है और अब कई लोग आगे आ रहे हैं। मेरे ख्याल से अगले महीने में ही 2 और स्किन बैंक भी खुलने वाले हैं। तो भारत में सभी दूर लोगों में इस बात की, डॉक्टर्स में इस बात की रुचि है कि वे अपने हॉस्पिटल में स्किन बैंक खोलें जिससे कि वे जले हुए घावों को आसानी से या अच्छे से इफेक्टिवली ट्रीट कर पाएंगे
1: जी। मैडम, जो स्किन होती है कई बार हम मूवीज में देखते हैं कि फेस ट्रांसप्लांट हो जाता है, तो फेस से भी स्किन ली जाती है या मतलब स्किन लेने के बाद जो फेस से अगर ली गई है स्किन तो फिर फेस पर क्या इफेक्ट होगा?
2: फेस से कभी भी स्किन नहीं ली जाती है क्योंकि फेस इंसान की आइडेंटिटी है और हम लोग वो कभी भी विकृत नहीं करेंगे। तो चेहरे से नहीं डोनेशन होता है, इनफैक्ट एक्सपोज्ड किसी भी पार्ट से यानी पंजे से और हथेली से भी कोई डोनेशन नहीं होता है। डोनेशन केवल पीछे की तरफ का लिया जाता है और हमारे यहाँ क्योंकि पूरी तरह से कपड़े पहना दिए जाते तो लोअर लिम दोनों पैरों की पूरी तरफ से त्वचादान हो जाती है, चेहरे से कभी भी नहीं होती
1: जी। मैम, कुछ मिथ्स हैं जैसे हमने जो बात करी अभी, एक और मिथ बहुत ज़्यादा कम्युनिटी में सुनने को मिलता है, हमारी सोसाइटी में सुनने को मिलता है कि जिस तरह से हम आए हैं दुनिया में उसी तरह से हमें दुनिया से जाना चाहिए, अगर अंग भंग हो जाता है, अगर कोई भी पार्ट हम जाने से पहले देखे जाते हैं तो अंग भंग हो जाता है और उस वजह से हमें मोक्ष नहीं मिलता या फिर हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलती, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
2: नहीं, ये मिथ है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी का एक पैर कट गया तो वो अगले जन्म में एक पैर के बगैर पैदा होगा, या उसका एक हाथ कट गया। हम लोग एम्पुटेशन करते हैं बर्न पेशेंट्स का, इसलिए से जल जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि उनका अगले जन्म में भी हाथ नहीं रहेगा। या जिसकी एक आंख में चोट हो गई थी और वो उस कारण से उसकी ज्योति चली गई थी, ब्लाइंड हो गए थे, तो अगले जन्म में भी वो ब्लाइंड पैदा होंगे। ये मिथ है, और इसका मोक्ष से, अगले जन्म की स्थिति से कोई सरोकार नहीं है। अगला जन्म है भी कि नहीं है, इसकी भी सत्यता कहाँ से
1: ये
2: मालूम है, किससे मालूम है?
1: बिल्कुल डॉक्टर चमनिया जी, अगर आप हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश देना चाहती हो तो आप बिल्कुल यहाँ पर दे सकती हैं उन्हें।
2: मैं केवल यही विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि हम लोगों को आगे आकर मृत्यु पर्यंत नेत्रदान और त्वचा दान इसलिए करना चाहिए कि इससे हम बहुत सारे लोगों को विजन ब्लाइंडनेस से बचा सकते हैं और उन्हें फिर से देखने की का मौका दे सकते हैं, और त्वचा से उन मरीजों का इतनी बड़ी सहायता करते हैं जो दर्द में तड़पते हैं और जो जिन्हें हम मौत के मुंह से बचा सकते हैं। तो इतनी बड़ी सहायता करने के लिए यदि हम मृत्यु पर्यंत अपने किसी अंग का दान करते हैं तो ये सबसे बड़ा दान होता है, और हम लोगों को ये सोच समाज में बढ़ानी चाहिए। दुनिया में ऐसे कई देश हैं, करीब 90-95% तक की जनसंख्या त्वचा दान करती है मृत्यु पर्यंत, तो हम लोग भी चाहेंगे कि हिंदुस्तान का नाम भी उन देशों में शामिल हो जहां हर इंसान इस चीज़ के लिए आगे आए, जो मृत्यु पर्यंत अपने त्वचा की दान करे, जिससे कि बहुत सारे मरीजों का फायदा होगा, न केवल जले घाव पर मेजर ट्रॉमा, बड़े बड़े घावों के मरीजों के दर्द से राहत का सबसे बड़ा मरहम है त्वचा दान।
1: जी,
2: इस निवेदन से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और अपने विचारों से मैं दूसरों को सहमत कराने की कोशिश कर पाई।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका कि आपने हमें ये टाइम दिया और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी बातें स्किन डोनेशन के बारे में जानकारी दी। इवन मुझे भी बहुत कुछ नहीं पता था, इस जानकारी से मुझे भी बहुत फायदा मिला है, और मैं आप सभी श्रोताओं से ये निवेदन करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अंग दान, त्वचा दान, नेत्र दान और देह दान के बारे में जानकारी एकत्रित करें। अगर आपके जो भी शंकाएं हैं आप हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करके आपकी शंका का समाधान कर सकते हैं, बट इसका संकल्प जरूर लें, प्लेज फॉर्म भरें, आप www.organindia.org या फिर noto.government.in पर जाकर प्लेज फॉर्म भर सकते हैं, और डोनर कार्ड आपको आपके ईमेल पर मिल जाएगा। अगली बार हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए खास मेहमान के साथ, और किसी और विषय पर चर्चा करने के लिए हम जल्दी ही हाजिर रहेंगे आपके सामने। धन्यवाद, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।
2: थैंक यू सर
1: जी।
3: आओ मिल के एक दिया जलाएं, अंतरतम की विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चम ओर फहराएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का, जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं।
4: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सीय सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सीय उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी सर्वोच्च पद पर क्यों न पहुंच जाए। श्री मोदी ने गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान संवाद में ये बात कही।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव भी साझा किए। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, जर्मनी के विदेश मंत्री योहान डेविड वाडेफुल और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु शामिल हुए। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। बैठक में सहयोग मंच के शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा हुई। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ये अभियान शुरू किया गया था। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस दुर्घटना में मृतकों के निकट परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जापान एशियाई खेलों में अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी में मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने 44 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले रोशिबीना देवी नाउरेम ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही टीम का पदक भी सुनिश्चित हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: अरे
1: क्या हुआ?
0: अरे
1: इसे क्या हुआ?
2: सांप पे काटा, सांप पे।
3: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
4: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
3: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालें क्या?
5: अरे ठहरिए ठहरिए, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे
6: हैं। अस्पताल ले जाओ भाई।
5: कमाल के हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं, 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवी और सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
3: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
7: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
8: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
9: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे। कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मार गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे। आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया। क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला। आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु, वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा आप क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
10: कुछ मीठा बोलूं?
11: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
10: मैं खाने की बात कर रही थी।
11: अच्छा, एक खाकर गुलाब जामुन मंगा दो।
10: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना। तुम
12: क्या

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम इंजॉय करना है आज पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम। जी हां श्रोताओ आओ सुनदे ने कार्यक्रम दा सब तो पहला पंजाबी गीत।

91.2 MHz

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी बने होए हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी की तादा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी की तादा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: क्या हुआ? क्या हुआ?
1: सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
3: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकाले क्या?
4: अरे ठहरिए ठहरिए, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे
5: हैं। उठाओ उठाओ, अस्पताल ले जाओ भाई।
4: कमाल के हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं, 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवी और सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
6: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
7: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
8: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे, कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे, आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया, क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला, आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा आप क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
9: कुछ मीठा बोलू?
10: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
9: मैं खाने की बात कर रही थी।
10: एक खाकर गुलाब जामुन मंगा था।
9: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना तुम।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर होई हो कार्यक्रम लेके माटी दी महक। तां श्रोताओं करदे ने कार्यक्रम दा आगाज इस प्यारे दे गीते कन्ने। तुहां सारे ने बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला कन्ने गूंज अपने बंदी।

ये तो हाँ सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला तेने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देन माटी दी महक आशोतों बढ़ते न कार्यक्रम चल गए तेने सुन देन एक और प्यारा दिया गीत।

हाँ बोला तीन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तुहां सारेयां ट्यून कीते है अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चलिया है माटी दी महक। श्रोताओं सुनते ने एक और प्यारा दिया गीत।

92.2 MHz पर। तो हाँ सारे ट्यून कित्ते है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला। मैंने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक। तो श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन दे एक और प्यारा दिया गीत।

इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देने माटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि करने ता श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम चगे कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तुहां सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना दे ना माटी दी महक अपनी रेडियो तो शशि कन्ने अशो तो बढ़ दिन कार्यक्रम च अग्गे कने सुन दे ने एक और प्यारा दिया गीत।

तो हाँ सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला तने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देन माटी दी महक आशो तो बढ़ते न कार्यक्रम चल गए तने सुन दे निक और प्यारा दिया गीत।

तहां बोला दे न रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तहां सारेयां ट्यून कीते है अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चलिया है माटी दी महक। श्रोताओं सुनदे ने एक और प्यारा दिया गीत।

91.2 MHz पर। तो हाँ सारे ट्यून कितने है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने। तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक। तो श्रोताओं बढ़ते ने कार्यक्रम च अगे कने सुन दे निक और प्यारा दिया गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए है तो हाँ सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महक कहा श्रोता अज कने कार्यक्रम च बस इतना ही तो हाँ सारे ने बने रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना हमारा विकास।

0: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
1: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते अभी ठीक हो जाएगा,
0: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालें क्या?
2: अरे ठहरिए ठहरिए, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं।
3: उठाओ उठाओ ठीक से अस्पताल ले जाओ भाई।
2: कमाल के हाँ हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवी और सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
0: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
4: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
5: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
6: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे, कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मार गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे, आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया, क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला, आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
7: कुछ मीठा बोलूं?
8: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
7: मैं खाने की बात कर रही थी।
8: एक काम कर, गुलाब जामुन मंगा दो।
7: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना। तो

291.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे।

दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

ये नए पुराने गीत हर शाम, हर दिन, हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को, जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

0: आठ
1: सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: क्या हुआ? इसे क्या हुआ?
1: सांप ने काटा, सांप ने।
2: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
1: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
2: या फिर मुंह से जहर चूस के निकाले क्या?
3: अरे ठहरिए ठहरिए, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसे ऐसी बातें कर रहे
4: हैं। उठाओ उठाओ, अस्पताल ले जाओ भाई।
3: कमाल के हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं, 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवी और सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
2: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
5: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
6: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
7: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे, कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे, आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया, क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला, आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा आप क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
8: कुछ मीठा बोलू?
9: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
8: मैं खाने की बात कर रही थी।
9: एक खाकर गुलाब जामुन मंगा था।
8: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना। तो

नमस्कार श्रोताओं, एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन तो है ट्यून कर रहा बुना और आऊँ सचिन कपूर हाजिर बुझे तो अपना पसंदीदा कार्यक्रम लेकर इंदी अपनी गप्पा बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी हुनने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। क्या हाल चाल ने श्रोता तुंदे, उम्मीद करनो है तुंदे हाल चाल ठीक बुने तो सब खरे बुने और अपने घरे खुश और तंदुरुस्त बुने हिन। जाहिर थे गल खुश की है सो जरूर बुने है ना, और खुश रहना की ऐसा बहुत ज़रूरी है श्रोता हूँ अक्सर बलनो हाँ लाइफ में, अगर तो है खुश हैं तो सब कुछ है तो सुले है ना। तो कार्यक्रम मंच सभी पहले तो धर्मशाला रे मौसम रे जानकारी जो असू है तो सो शेयर कर दें, सो शेयर कर दें श्रोता हूँ। इस समय 18 डिग्री सेल्सियस रे आस पास की सो मौसम बन रहा है श्रोता हूँ। ह्यूमिडिटी रे गल करूँ जती अंग्रेजी में नमी बल दिन 80% की असो नमी बन रही है श्रोता हूँ। और कार्यक्रम मंच हाँ कार्यक्रम मंच श्रोतों तो वो दसना चाहते इस समय ह्यूमिडिटी की 80% था और हाँ ये है इस समय धर्मशाला रा मौसम। थोड़ा करे बदल के अंश जरूर छो रहे थे, ये काले बदल भी थी, ये श्रोतों दुत्ते भी कुछ इस प्रकार रहना और बोचे सकता मोस्टली संडे जो भी कि सो बदल ही रहन है ना, बरखरे आसार हैं लेकिन कुछ पता नहीं है पूरा कॉन्फिडेंटली कि ऐसा होना बोले सकता कि क्या बुना क्या ना बुना। हाँ बहरहाल कार्यक्रम मंच बहुत से गीत और तुम्हें सब मेरी फरमाइशा जी अक्सर रोज़ाना की ऐसा है पूरी करते हैं और बहुत सी जानकारी जो रोज़ाना है तुसु तक पहुँचन दिन सो सब गल लगे सो ज़रूर भूने हिन छोतों। लेकिन आइया तथों पहले कार्यक्रम मंच लेकर ही चलते हैं श्रोतों और कार्यक्रम मंच कुछ एक जानकारी अभी तो हो गया है तो सो गया है ज़रूर शेयर कर ले साझा कर ले। लेकिन आइया आगाज कर दें कार्यक्रम रहा श्रोतों इस गीत सो की

0: ছোট এফ এম ব্যান্ডে কি আনুই দশমলব দুই মেগা হার্টজ পর রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা তো হে টিউন গুর আর রেডি গুঞ্জন মা তো হে আর জে সচিন কাপুর জো ইস সময় হুনু কর দেহিন ছোটো তা তো সব কল জরুর করে সক দেহিন 7018817091 পর নম্বর এক মোকে ফির শেয়ার করি নো তুস হোগে সাঝা করি নো 7018817091 পর তো হে কল করে সক দেন আর আপনা পছন্দিদা গীত কি ছোটো সো হুনি সক দেহিন और अपने एरिया रे इलाके रे अपने क्षेत्र रे अगर जानकारी तुस लगता कि कुछ दसने लायक हा तो सो जरूर दस ही सकते हैं साझा कर सकते हैं। बहरहाल चलते हैं और आवारा पशु थों के शोतों सो बिल्कुल सावधान तो है रहन कजो कि अकी आवारा पशु के शोतों सो आकी युवक गंभीर तरीकों की ऐसो घायल करीता हा से रिहा लेने भी सांस लेने भी नड़ी की ऐसो टूटे अशोतों एवे और ये जो मामला है ज्वाली विधानसभा क्षेत्र रहा शोतों ज्वाली विधानसभा क्षेत्र रहे मामला हा एक छात्र हा स्कूल गोइंग थो बेचारा और तसे बीच की ऐसो एक रोड़ा मंच अपने घर रहे रोड़ा मंच की ऐसो एक इस प्रकार होगी सांस होगी कि ऐसो रूबरू बंदा हा और सो सांस तसी बरा अचानक थो एकदम कि ऐसो हमला करींदा और से रिहा लेने भी नली माकिया सो कुछ नुक्स की ऐसो पैगंदा हा शतो ता जितने भी आवारा पशु बंदे इन सड़क अंदर इं थो थोड़ी करी दूरी थोड़ी ना थोड़ी ज़्यादा ही दूरी की आ सो बनाई करी जरूर रख सतो ताकि इस प्रकार री वारदात किया सो तुसु होगी ना बुझेगा छता सचेत रहा सावधान रहा और इस होगी सतो कार्यक्रम जो है हगो बनंदे हैं और अगले गीता होगी कि सो अपने सभी श्रोता जो है जरूर रूबरू करवंदे बने रहा जुड़ी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला सोगी और कार्यक्रम ये चलते रहना है लेकिन चलते तू सभी जो श्रोता इस गीतरी किनारी है गीतरी फरमाइश सुरेखा जी रही है जो कि नियर नौडरानी मंदिर रे निवासी हैं तेरी फरमाइश है जरूर पूरी कर ले लेकिन तथों पहले इन दे अगले श्रोता के सोस हो गए कनेक्टेड हैं पुस दिन कौन बोलूं दे नमस्ते जी
1: नमस्ते सर जी
0: नमस्ते जी नमस्ते जी कौन बोलूं दे और कड़ी था बोलूं दे
1: और खेड़ था बोलूं दे मेरे ना
0: कड़ी हो जी
1: खेड़ था गमरू
0: गमरू थू
1: हां जी
0: अच्छा क्या नाम जी तुंदा
1: रिहान
0: रिहान जी क्या कर दें तो है कस स्कूल है कस क्लास समझ पर दें
1: और श्याम नगर स्कूल है धोलधर पब्लिक स्कूल है पता और सत्य क्लास अंदर
0: श्याम नगर तुम्हारी आवाज़ थोड़ी कर क्लियर ना आई मुझे तक श्याम नगर कस स्कूल है धोलधर स्कूल है
1: हाँ जी धोलधर पब्लिक स्कूल
0: हेलो
1: धोलधर पब्लिक स्कूल
0: हाँ धोलधर पब्लिक स्कूल अच्छा क्या इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता तुसु पढ़ने में
1: साइंस
0: हाँ जी अबे बल्ला जी कौन देना हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी कौन देना सब्जेक्ट अच्छा लगता हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी री हाँ जी अबे छुंदे तुंदे आवाज हेलो
1: हाँ जी
0: हाँ रेहान जी अबे बोला कौन दिन है सब्जेक्ट अच्छा लगता है पढ़ने है कौन कस सब्जेक्ट में इंटरेस्टिंग है तो है
1: साइंस
0: साइंस में क्या बात है ता टेंथ में तो है साइंस में इंटरेस्टिंग है तो प्लस वन प्लस टू में क्या रखना फिर मेडिकल
1: हाँ जी मेडिकल
0: मेडिकल रखना क्या उम्मीदन घर वाले भी और तुम देखे सपने
1: मेरा देखी सपना
0: क्या सपना
1: क्रिकेटर बनना
0: ओके तो तू है प्रैक्टिस में गंदे इन
1: हाँ जी
0: धर्मशाला एचपीसी स्टेडियम गंदे तो है
1: नहीं दूसरे
0: दूसरे स्टेडियम कड़ी
1: कचहरी
0: कचहरी कड़ी कर दें कस एकेडमी में तो है क्रिकेटरी प्रैक्टिस कर दें
1: एचपीसीए
0: हाँ एचपीसीए सो ही तो बोलूँ दो, पर एचपीसीए वाले पे तो जो ग्राउंड के ग्राउंड सोगी के एक और ग्राउंड तड़ी करवंदे उन्हें प्रैक्टिस तो सो है
1: जी
0: ना। अच्छा क्या बात है, डेली गंदन की कदी कदी गंदन
1: दिल्ली
0: क्या टाइमिंग रहन दी तुम दे प्रैक्टिस रे?
1: शाम 4 से 5।
0: 4 से 5?
1: आज नहीं गया ना लेकिन आप
0: अच्छा गद्दी अंदर ही कने, हिंदी अंदर मत कने, हिंदी
1: जी
0: में जो समझना है लग दे चूरथों पांच, गद्दी अंदर ही कने तो है।
1: ठीक है।
0: अच्छा चूरथों पांच प्रैक्टिस करना कहते तो स्कूल थों कितने बजे फ्री बंदे? 3 बजे?
1: हाँ जी 3 बजे
0: अच्छा फ्री तो है गमरू उस दिन श्याम नगर थों
1: क्या बोल दे। हाँ
0: आम बालदा के गमरू उस दिन फ्री तो है श्याम नगर थों पैदल या बाइक बुइक में
1: गड्डी अंदर
0: गड्डी अंदर? अच्छा फिर 4 बजे तो है वापस गमरू थों एचपीसीए स्टेडियम के उस दिन
1: जी
0: क्यों पूछ दे? हाँ जी ना कोई छड्डी गंदा दसो।
1: जी
0: चलिए ठीक है, बड़े सवाल पूछ गए और भी बड़े ज्यादा दिमाग लग पियो मेरे। चलना तो ये दसा कि क्या है फरमाइश है, किन दिन गीत होना पसंद कर ले? हाँ
1: लंका
0: जी
1: राजा लंका
0: लंकर राजा, क्या बात है। चलिए ठीक है जी, जरूर होना ले दसुए गीत।
1: राजा
0: शो तो FM बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो, और कार्यक्रम RJ सचिन कपूर सो की बिल्कुल लाइव होने कर दे हैं। चलिए चल दें शो तो कार्यक्रम जो हगो बढ़न दें और सुरेखा जी री फरमाइश में होने दें तू सब।

0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है ट्यून कर रो और सुरेखा जी री फरमाइश में है सभी ये प्यारे दे गीत हुनो आइए कार्यक्रम जो हगो बनंदन और अगले श्रोता सोगे कनेक्टेड है। नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: जी कुन बल्लुन देन और कड़ी थों बल्लुन देन।
1: नमस्ते सचिन भाई।
0: नमस्ते जी। नमस्ते।
1: हाँ बल्लुन दा जी मैक्लोडगंज से।
0: मैक्लोडगंज से। अच्छा मैक्लोडगंज तो चलिए ठीक है जी।
1: हाँ जी मैक्लोडगंज से थल्ले 2 किलोमीटर नीचे सुरेश बल्लुन दा हूँ।
0: सुरेश जी बल्लुन देन।
1: हाँ जी। हाँ जी सर इनकी थल्ले गल हो रही है।
0: अच्छा जी सुरेश जी ठीक ठाक।
1: सचिन सर क्या हाल चाल जी तुम्हारे।
0: बढ़िया सुरेश जी है ठीक है। और तो ये दसा तुम देखे हाल चाल घर परिवार सब ठीक ठाक है।
1: सब ठीक ने सचिन सर सब ठीक बढ़िया।
0: अच्छा खुश इन तंदुरुस्त इन।
1: हाँ जी हाँ जी बस ठीक है चल रहा काम।
0: जी बिल्कुल कम काज चली रहे जीवन में बस दो चीज़ा बड़ी इम्पोर्टेंट रहन दिन इन दे लाइफ में कि अका से खुश रहन और अका है तंदुरुस्त रहन।
1: जी जी सचिन बिल्कुल
0: जी। जी जनाब पहले तो फरमाइश दसी दिया
1: जी जो करना होने दिया समीर समीर सर रा
0: जी
1: परंपरा लास्ट स्टेप होना मो परंपरा गाना करो नहीं। हाँ जी
0: जी जी जी जी
1: थे राग तक उंगली वाला ना।
0: हाँ जी हाँ जी तो कोई नोई ताजी तुंदे साइडरी।
1: सॉरी सर हम तो आज नहीं साथ मिले
0: मिलो तो कुछ नोई ताजी तुंदे साइडरी।
1: नोई ताजी तो कुछ नहीं फिलहाल बस इंदे रोड़ा नहीं हाल बड़ी बुरा हाल था इंदा मैं छोड़ गया नहीं।
0: अच्छा
1: हाँ धर्मशाला तो मैकलोडगंज 5 किलोमीटर रास्ता बुरा आ रहा।
0: हाँ जी
1: हाँ जी इतना टूरिस्ट इंदा ऊपर पर ना कोई होना ही ना करता कोई भी इंदे मैकलोडगंज भी। हाँ जी
0: बिल्कुल टूरिस्ट इलाका और मतलब इतना विश्व प्रसिद्ध तुंदा इलाका है ना तड़ी होना ही ना बहुत फिर।
1: हाँ जी प्रशासन मतलब कोई भी होना ही ना करता खासकर मैकलोडगंज की पता नहीं क्या गल है। हाँ जी टूरिस्ट एरिया रिंदा इंदा बिल्कुल फेमस है स्थान कोई भी मतलब होना ही ना
0: विश्व प्रसिद्ध हां तुंदा ता स्थान।
1: जी पर ये थोड़ा बरसात थोड़ी रुकी गया बेटा मतलब ठीक है इधर बरसाती टाइम में तो बहुत बुरा हाल होता है।
0: हाँ काफी बुरा हाल तो जी
1: जी गड्डी का बड़ा नुकसान होता है टूरिस्ट इंदा टूरिस्ट बड़ी दिक्कत होती है।
0: हाँ काफी ज्यादा।
1: हाँ जी खासकर तो पानी निकास जगह नहीं बिल्कुल भी ना
0: जी
1: पूरा पानी रोड अंदर चलता बुरा हाल है मतलब
0: जी
1: सब तो ज्यादा तो सी विलेज रहा पानी पूरा ऑन रोड चलता तो पानी मतलब पता नहीं की सो पाइप पाइप छोड़ता तो मनु पिगड़ दे मुझे लगता पानी बहुत दिक्कत होती है बरसात के टाइम में
0: बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली तो है दसो प्रशासन जो तो है आई थिंक विज्ञापन भी देकर ही छू रहे ना।
1: जी सर
0: मेरे प्रशासन तक ये गल पूछी छू रहे कि तुम रोड इस प्रकार रहा फिर भी कार्रवाई ना पूछू कर दे क्या मान
1: ना ना जी बिल्कुल पता नहीं मांगता है ये रख देन कि मतलब टूरिज्म एरिया तो तुम्हें कम से कम थोड़ा बहुत ही बनाए दिया मतलब इस यूं तेरी वर्ल्ड फेमस मतलब दलाई लामा जी रहते हैं इंदेड़ी में गोड़गंज में
0: बिल्कुल
1: कम से कम इतनी थोड़ा बारे में सोचना चाहिए ना। बाकी तो चलो अब मुझे लगता है कि ऊपर साइड कोई मतलब बड़ा एमएलए वगैरह ना रहता कोई मतलब तो मुझे लगता है सारी खातिर शायद ना कर दे उन्हें क्या पता बाकी कोई राजनीति असर की क्या पता नहीं। हाँ जी मतलब 2 किलोमीटर दायरा ऐसा कि मतलब बहुत बुरा हाल है जी
0: बहुत बुरा हाल है।
1: बस 2-3 कमेटी मेंबर इंदे ने सो मिट्टी पाई गंदे है
0: जी
1: बरखा बुंदे फिर दो टाइम में फिर सो साफ हो जाता है
0: मिट्टी साफ।
1: हाँ जी जी
0: चलिए ठीक है जी। कुन दिन गीत। अच्छा गीत तो है दसीता ठीक है जनाब तुम दी फरमाइश के सुआ है पूरी करीन दिन और जो तुम दी दुई
1: फरमाइश जो होना आज फिर थोड़ा स्टेप होना तो थोड़ा दे मु
0: जी जी बिल्कुल
1: इस गाने का थोड़ा स्टेप होना
0: जी

0: सचिन सर।
1: क्या बात है, क्या बात है। चले जी तो है होना इता अब इन दिवारे होना नहीं रही है सब भी होना नहीं। थैंक यू सचिन सर,
0: इसी साल बात करके बहुत अच्छा लगता सचिन सर।
1: ठीक है जी, धन्यवाद।
0: ठीक है जी, ओके सर
1: जी। चलिए शो तो इस गीतर आनंद लेते हैं न है सब।

0: चलिए जी, लास्ट स्टेप के थो इन दायरी फरमाइश सो है पूरी करे इक्यानवे दशमलव दो मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून गुरु और कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा कहने सो चल रही इन शो तो और कार्यक्रम मंच हक मौके फिर सभी हुनने वाले रहे सभी श्रोतागण हक मौके फिर आऊँ स्वागत करनू हार्दिक अभिनंदन करनू हाँ शो तो आइए कार्यक्रम जो थोड़ा करे हगो ब्रंदन फिलहाल तो मानसून की सो शो तो ही बाचल तो विदाई हले तक की सो ना बोया और न जाने कहने तक की सो विदाई बुझी सकते हैं। पिछली बार की सो 30 सितंबर तक विदाई की सो मानसून री बुझी गई थी शो तो, लेकिन हले तक की सो ऐसा कुछ भी नहीं कि मानसून री विदाई की सो मतलब बुझ सकता इन्हें वाले दो चूट दिन अंदर किया सो बुझे गच्छा, लेकिन फिलहाल तना भोया कुछ भी है ना जी। तो ठगी की है सो बड़ी चल रही है सो तो ऑनलाइन जो ठगी है सो बहुत ज़्यादा चल रही है आजकल एआई वा जमाना है ना कुछ भी आ सो बड़ा सोचे समझे करे कि सो कोई भी ऐप या कोई भी गेमिंग किया सो सोचे समझे करे तो है इस्तेमाल करे सो तो अन्यथा तुसु में तैड़ी भी दसो तो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया सो बच्चू करता है आजकल। कार्यक्रम जो हगो ब्रंदन छतो और अगली जानकारी होगी कि सो तुसु ज़रूर शेयर कर दें जी कि शतो तो हेरू बुना जो मनु आई थिंक 8:30 बाद या 8 बजे के करीब के सो गैप होने था बाईपास में काफ़ी लंबा जाम की सो लग रहा थो बहुत सारे मनु शायद बुझ सकता पता भो कि लंबा जाम की सो कयो लग रहा थो कजो कि बस था टकराए गो थो शो तो पोल टकराए गो थो था ठेरी वजह किया सो लंबा जाम लगो थो शो तो दाढ़ी बाईपास किया सो बंद थो धर्मशाला पालमपुर मार्ग ये पूरी जानकारी तो सुध कह जरूर पहुँच चले लेकिन इन दोतगन असुगे कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी, नमस्ते जी,
1: नमस्ते जी,
0: नमस्ते जी, नमस्ते। कौन बोलूं देन और कड़ी थो बोलूं देन?
1: सर मेरा नाम शशि कुमार है, हूँ इस टाइम तुम्हें तो मेरे घर ना आने ना।
0: अच्छा
1: पर इस टाइम है गोवा अंदर ना।
0: क्या बात है, क्या बात है शशि कुमार जी, गोवा तो फोन करू कर देन।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: क्या बात है।
1: फोन तो मते दिन आरा करू कर दी है पर ये पिक ना कर दी क्या वो सो ना पता
0: ऐसा नहीं है कि असु कॉल ही है तो है पिक ना करे असु तो पूछना चाहते कॉल जी है जरूर पिक कर लेंगे।
1: हाँ दो त्राई बार करी है मैं कॉल ना तो।
0: अच्छा
1: हाँ जी
0: शशि जी, पहले तो फरमाइश दस ही दिया गोवा थो क्या फरमाइश सुनना चाहते हैं फिर तथों बाद कुछ कुछ
1: फरमाइश तो कोई भी होना दे गाना इनका था सदा बाहर जो मर्जी जड़ा मर्जी पसंद सब कुछ
0: दा ना। फिर भी एक इच्छा बंदे की मु धर्मशाला थो गोवा तक रे गीत सुनना।
1: अच्छा जी जी फरमाइश सुन राणा रे होना दे कोई गाना
0: अपना अपना रेस्टोरेंट लीवर बोने तो है ना जी।
1: ना ना रेस्टोरेंट नहीं, इंदा फर्नीचर का काम है, कारपेंटर का काम है ना।
0: अच्छा तो है गोवा मन जे मुझे लगता काफी साल था रे कर देन फेरे।
1: ना ना जस्ट अवे जुरा सी हुए 5-6 महीने।
0: अच्छा 5-6 महीने हुए ना।
1: हां जी
0: तो अच्छा के सरवाइव
1: काम तो इंदा ऊपर ही हुंदा जी मैक्लो बॉक्सो अपने ग्रांड रे पर जस्ट एड जुरा का स्क्रीन थ्रो ना।
0: अच्छा अच्छा
1: हां जी।
0: अच्छा तो कितने अच्छा फर्नीचर का काम है तुंदा?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: कौन दिन लकड़ी बढ़िया बंदे फर्नीचर रे?
1: अब जगह रे साहब इनकी शहर था देवदार दी चल दिया ये डी अलग अलग लकड़ी ये डी तो कोई पता नहीं ये कौन दे लकड़ी रे।
0: अच्छा देवदार रे खरे बंदे है ना इनकी
1: शहर? इनकी शहर तो देवदार चलता ना। ये डी लकड़ी है पर ये थोड़ी बाहर रही लकड़ी ना।
0: अच्छा
1: तेरा नाम महोगनी।
0: अच्छा क्या बात है। तो छेड़ी तो
1: हाँ
0: एक इसकी वे थ्रू चूरन और गोरा।
1: जी दसो ना त्यारा जी जड़ा भी काम ऊपर रेस्टोरेंट वगैरह दा है कर देना ऊपर मैं कलो
0: अच्छा
1: तस्कर नु छुरे लिया है।
0: इड़ी त्यारा घर काम बुना है ना।
1: हाँ जी
0: क्या बात है। तदा गोरे नजारे ले कर दिन तो है।
1: ले कर दे छे या छा छे छे महीने उठ गए।
0: अच्छा 6 महीने था उठी है ना।
1: हाँ जी
0: इतना लंबा प्रोजेक्ट दी थ्रो तुसु।
1: फिलहाल 3 मंजिला बिल्डिंग है ना ताकि
0: अच्छा
1: अंदर रूम वगैरह ना दे तेरा फर्नीचर वगैरह जितना भी आना ये बेड हो गया कुर्सी हो गई टेबल हो गया
0: अच्छा
1: किचन वगैरह सब कुछ है
0: तो
1: ऑलमोस्ट
0: रहना खाना इठी यहाँ रहे या।
1: रहना खाना इतनी है।
0: क्या बात है। एरा अपने कमरा हुनर के सोतु सुकड़ी उकड़ी ले हुआ है ना।
1: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी
0: और
1: आजकल तो वैसे गल तो सीधा आजकल इस कम सीखना चाहता नहीं कोई तो
0: ना
1: बिल्कुल ही ना। मैं जो आज काफी टाइम हो चुका काम कर दे कम से कम 10-12 साल हो चुका तो मैं तो आज दिन तक नहीं कोई मोटा नहीं थी कारपेंटर का काम सीखता कोई बड़ा घट।
0: ना से
1: आजकल बच्चे सोचते कि बस आशी नौकरी मुड़ा नौकरी का वह किस्मत आई का पाना
0: एग्जैक्टली जी।
1: और दूसरा अपनी मेहनत तो बहुत आता नौकरी आजकल नौकरी मिलना बड़ी मुश्किल हो रहा
0: बड़ी ज्यादा बहुत ज्यादा
1: आज के टाइम। हम जितना अपना कोई अपना काम सीख लिया कोई अपना हुनर सीख लिया सो ही बेहतर है। हाँ
0: ये तो मनने वाली गल है। पर तो दसू कर दे कि तू पिछले 10-12 साल थों कि असो हेरू कर दे कि कोई भी युवा किया असो इस फील्ड में कि असो ना इना चाहूँ करता हा। इस फील्ड में इस करे नेचुरल तो ही गल है कि अपने रोजी रोटी किया सो बढ़िया चलने हैं। इवन कि अपना काम बुना है ना अपने कमर
1: हाँ जी हाँ
0: मानो कि असो अपू राजा बुना है ना। नौकरी तो फिर
1: हाँ
0: नौकरी
1: जी हाँ
0: बनती
1: जी
0: ना।
1: हाँ जी अभी अपना सिलसिला चलो कुछ भी आ चल दुआ सर्कल जो भी आ ये है कि ये टाइम ना मोल दे केंद्र सी को काम
0: अच्छा
1: चल बुआ था चल बुआ बस थोड़ी देर इंदी साइड बरसात दी मौसम अंदर होंगे दिक्कत आती बाकी तो लगभग ऑलमोस्ट साल भर तो बिजी होंगे है
0: हाँ जी
1: सो आ
0: अच्छा चलिए ठीक है जी। ता फरमाइश तो है दसी सुनील राणा जी रा कोई भी गीत होना है ना।
1: हाँ जी हाँ जी
0: चलिए ठीक है जी। ले तो है गोरे नजारे फिरी।
1: ठीक है जी धन्यवाद।
0: इस समय गोवा में धूप निकल रही है कि ना मौसम।
1: गर्मी तो अड़ी 6 महीने जी 6 महीने गर्मी तो तुम्हें वहां आती नहीं है सोने टाइम पर आके है कंबल तक ना लेंदे पूरी इतनी गर्मी अड़ी साथ बहुत बरखा जो कुछ ही बंदा तम ही उल्टा गर्मी हो जाती दे रही वाला निकलता जी ना
0: अच्छा
1: गर्मी तो अड़ी सो दी है जी इंदी साइड जरा धर्मशाला अंदर जरा कभी बर्खा होती तो ठंड हो जाती है मिनट अंदर एड़ी
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: नहीं सो दे मौसम एड़ी तो कोई पता ना बर्खा रहे कोई पता ना तो दूबा गर्मी तो एड़ी 12 महीने
0: 12 महीने। अच्छा जी तो वापसी रा कहने तक रहे तुंदा टूर हिमाचल प्रदेश में अपने धर्मशाला में।
1: वापसी फिलहाल दा 10 तरीक तक आ टाइम दित रहा है बाकी इधर
0: चलिए
1: जी
0: 6 महीने
1: कम
0: तो 6 महीने तुंदा गोवा में कंप्लीट बचाने 10 10 तरीक है ना। हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: माफ़ करे जी तुम्हारी कॉल डिस्कनेक्ट करना पैने क्योंकि आवाज़ नहीं छू करती है सो। चलिए शो तो असू डिस्कनेक्ट किए सो करना पड़ेगा जो कि आवाज़ नहीं छू करते थे। बरहाल कार्यक्रम जो हगो बढ़ते हैं और फरमाइश रहा दौर के शो तो सो शुरू कर दें बने रहे तो ये सब रेडी गुंजन धर्मशाला सो के।

तो श्रोतों आइए बिना किसकी देरी रेखी है सो अगली फरमाइश भी है पूरी करीन दिन का जो कि फरमाइश रहा दौर आता दौर के सो मुकड़ा ने चिंदा और गोवा थो फोन चली है और फिर सुनील राणा जी री आवाज़ थो यारा दिल के सो खुश करना सो पे है जरूर करते हैं।

तो श्रोताओं, इस गाने का आनंद की असूहा जरूर लेना है। तुसो लगो करते होना कि शायद तु ही बोल बुए और तत्थों बाद ब्रेक ना ब्रेक नहीं है। बिल्कुल इस गीत का आनंद है लेंदे दो सब हूँ करते हैं। इस समय FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला।

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.9 अदोई मेगा हर्ट्स पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा के अंसो हूँ कर देने अपने वीडियो सेट में तो श्रोतो अब वक्त हो चुको तुस सभी थो अलविदा लेने रहा तुस सभी हो टाटा बाय बाय बलने रहा और गंदे गंदे बस यही बलना चाहूँ श्रोतो कि अपना ध्यान जरूर रखा प्रकृति रा ध्यान भी जरूर रखा लेकिन इन दक्षोता बड़ी देर रह गई इनसे कॉल करो कर दे हिन पुस दिन कौन बोलूं देन और कड़ी तो बोलूं देन नमस्ते जी हेलो हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार जी हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार जी
1: सचिन जी नमस्ते
0: नमस्ते जी नमस्ते
1: ठीक ठाक ना
0: बहुत बढ़िया जी तो बोले तो ठीक ठाक ना हाँ जी
1: टाइम बुझ गया ना
0: टाइम तो बुझ गया फरमाइश दस ही दिया तो है अपनी जी
1: चलो दो
0: ठीक है जी दत्ते मुलाकात कर दें तो सोगी धन्यवाद
1: चलो ठीक है
0: जी तशो तो तुसु सब भी जो ये बोलना चाहनु हाँ कि माँ बाप री सेवा की असो जरूर करा मुटेरा आदर की असो जरूर करा आदर सत्कार की असो जरूर करा और जितना बुझ सकता अपनी औरतों अच्छा जरूर करा भला किया सुमनुरा जरूर करा खरा के असो जरूर करा प्रकृति सोगी प्यार के असो जरूर रखा शतों अपनी प्रकृति जो किया सो साफ सुथरा जरूर रखा शतों इन्वायरमेंट रा ख्याल जरूर रखा शतों और मदद जो जरूरतमंद जिस तुस वो लगता कि सेरी मदद की अस वसू करना चाहते हैं जो फिर बोलूँ जो जरूरतमंद सेरी मदद की अशतों सो जरूर करा तो है इन्या शब्द थो आऊँ सचिन कपूर अब तुस थो ले लेनो इजाजत हंसते रहे मुस्कुरादे रहे और रेडी गुंजन मार्चे सचिन कपूर जो है हों नमस्ते धर्मशाला।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। मैं हूं पिंकी। आइए सुनते हैं आज का समाचार बुलेटिन। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 6 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आएंगी। बिलासपुर, मनाली और प्रसिद्ध शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। हिमाचल हाईकोर्ट की कार्यवाही अब घर बैठे भी देख सकेंगे। मुख्य न्यायाधीश ने लाइव स्ट्रीमिंग सुविधा का उद्घाटन किया। प्रदेश के स्कूलों में नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 बार अतिरिक्त पौष्टिक आहार देने की योजना। क्लास 3 पेंशनरों को बकाया एरियर की पूरी राशि जारी करने के आदेश। परीक्षा में लापरवाही पर शिक्षा बोर्ड सख्त, कई केंद्र अधीक्षकों को नोटिस। घेपन झील की स्थिति खतरनाक, भारी तबाही की आशंका के बीच प्रशासन ने अलर्ट सिस्टम लगाने की तैयारी की। प्रदेश में अब घर से ही 4 हिस्सों में कचरा अलग करना होगा। नए ठोस कचरा प्रबंधन नियम लागू। 16वें वित्त आयोग के तहत प्रदेश की पंचायतों को 3774 करोड़ रुपए की राशि मंजूर। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 6 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आएंगी। समाचार के अनुसार उनके प्रस्तावित कार्यक्रम में बिलासपुर, मनाली और प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर की यात्रा शामिल है। राष्ट्रपति बिलासपुर में आयोजित एक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी और विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। इसके बाद उनके मनाली जाने और अटल टनल का दौरा करने की संभावना है। 7 अक्टूबर को राष्ट्रपति कुल्लू के प्रसिद्ध हिडिम्बा माता मंदिर में भी दर्शन कर सकती हैं। इसके बाद उनके नई दिल्ली लौटने का कार्यक्रम बताया गया है। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। संबंधित जिलों के प्रशासन और अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की कार्यवाही अब लोग घर बैठे ऑनलाइन देख सकेंगे। मुख्य न्यायाधीश ने लाइव स्ट्रीमिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। इस सुविधा का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और लोगों को अदालत की कार्यवाही तक आसान पहुंच उपलब्ध कराना है। हाईकोर्ट की ओर से पहले से ही कई डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिनमें केस स्टेटस, ई फाइलिंग, ऑनलाइन कॉज लिस्ट और वेबकास्ट जैसी सेवाएं शामिल है। हाईकोर्ट की वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग और अन्य डिजिटल न्यायिक सेवाओं के विकल्प उपलब्ध हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि न्याय होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। इसी दिशा में लाइव स्ट्रीमिंग को महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। अब नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 बार अतिरिक्त पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस योजना के तहत नियमित मिड डे मील के अलावा सप्ताह में 2 बार अतिरिक्त पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। समाचार के अनुसार इसमें बच्चों की पसंद के अनुसार उबला अंडा या ताजा फल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था शामिल है। सरकारी व्यवस्था के तहत योजना की निगरानी प्रधानाचार्यों, मुख्याध्यापकों, स्कूल प्रबंधन समितियों और संबंधित अधिकारियों के माध्यम से की जाएगी। प्रदेश सरकार ने 31 जनवरी 2022 तक सेवानिवृत्त हुए क्लास 3 कर्मचारियों की पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के बकाया एरियर को लेकर आदेश जारी किए हैं। अक्टूबर में मिलने वाली सितंबर की पेंशन के साथ एरियर का भुगतान किया जाएगा। आदेश के मुताबिक 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए क्लास 3 कर्मचारियों को पहले से लंबित पेंशन और पारिवारिक पेंशन एरियर की 30% राशि जारी की जाएगी। इसके बाद यदि पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन एरियर में कोई राशि शेष रहती है तो उसका भुगतान किया जाएगा। संबंधित विभागों को आदेश के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाओं में लापरवाही बरतने वाले परीक्षा केंद्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। सीसीटीवी लाइव निगरानी के दौरान कुछ परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड के दिशा निर्देशों का पालन नहीं होने की बात सामने आई। इसके बाद संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षाओं की पवित्रता और पारदर्शिता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।
जिन केंद्रों पर लापरवाही पाई गई है वहां केंद्र अधीक्षकों, उपकेंद्र अधीक्षकों और समन्वयकों से जवाब मांगा गया है। प्राप्त जवाब और सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लाहौल स्पीति की घेपन झील को लेकर प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। समाचार के अनुसार झील की स्थिति खतरनाक बताई गई है और कुछ ही मिनटों में भारी तबाही की आशंका जताई गई है। प्रशासनिक टीम ने मौके का निरीक्षण किया और झील तथा आसपास के क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया। विशेषज्ञों के अनुसार झील के आसपास लगातार निगरानी जरूरी है। समाचार में बताया गया है कि झील के पानी के अचानक बढ़ने की स्थिति में निचले इलाकों में खतरा पैदा हो सकता है। इसी को देखते हुए प्रशासन की ओर से अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। इसका उद्देश्य संभावित खतरे की जानकारी समय रहते लोगों तक पहुंचाना है। हिमाचल प्रदेश में ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। इसके तहत घरों, दुकानों, संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में कचरे को स्रोत पर ही अलग अलग करना अनिवार्य होगा। कचरे को खुले में फेंकने, जलाने और जमीन में दबाने के साथ साथ नालियों, जल स्रोतों और सार्वजनिक स्थानों पर डालने पर भी रोक होगी। कचरे को चार श्रेणियों में अलग करने की व्यवस्था बताई गई है। इनमें रसोई से निकलने वाला गीला कचरा, सूखा कचरा, सैनिटरी कचरा और विशेष देखभाल वाले कचरे को अलग रखना शामिल है। प्लास्टिक, कांच, धातु जैसी पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को अलग रखने पर भी जोर दिया गया है। इसके साथ ही स्कूलों में विद्यार्थियों को कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूक करने की योजना है। इसका उद्देश्य बच्चों में कचरा अलग करने और स्वच्छता की आदत विकसित करना है। हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण पंचायतों के विकास के लिए 16वें वित्त आयोग के तहत 3,744 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। यह राशि वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्षों की अवधि में उपलब्ध होगी। इस राशि से पंचायतों में पेयजल, स्वच्छता, सड़क, नालियों, सामुदायिक भवनों और पंचायत भवनों से जुड़े विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। कुल राशि का एक हिस्सा अनटाइड ग्रांट के रूप में और दूसरा हिस्सा टाइड ग्रांट के रूप में बताया गया है। टाइड ग्रांट का उपयोग निर्धारित क्षेत्रों जैसे पेयजल और स्वच्छता से संबंधित कार्यों के लिए किया जाएगा। पंचायतों को राशि के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। डिजिटल निगरानी और ऑडिट की व्यवस्था के माध्यम से खर्च का हिसाब किताब रखने पर भी जोर दिया गया है। आज बुलेटिन में BS इतना ही। धन्यवाद।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: हर साल मैं आपको बता दूं 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवियों सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
1: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
2: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
3: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
4: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे। कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे। आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया। क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला। आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु, वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
5: कुछ मीठा बोलूं?
6: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
5: मैं खाने की बात कर रही थी।
6: अच्छा, एक खा कर गुलाब जामुन मंगा दो।
5: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना। तो

सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला और 91.2 FM के साथ साथ हमीरपुर में ढटवाल की आवाज 88.4 मेगाहर्ट्ज़ पर भी आप हमें सुन रहे हैं। और साथ ही ये बता दूं कि इस वक्त हम अपने फेसबुक पेज से भी लाइव हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो एक बार फिर से हमारे सभी श्रोताओं को का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में।

और उन सभी श्रोताओं को भी बहुत मुबारक जो किसी न किसी खास वजह से अपना आज का ये दिन मना रहे हैं, 24 सितंबर सन 2026। और आज है बृहस्पति वार। तो देखा श्रोताओं, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गए। कल 25 तारीख हो जाएगी, बस ऐसे ही चलते चलते हमारे श्राद्ध पक्ष भी शुरू हो जाएंगे। अभी तो त्योहारों का ही सीजन चला हुआ है और अभी तक भी हम कुछ उत्सवों में जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही साथ में पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। और धन्यवाद जो भी हमें लाइक कर रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पर, उन सभी श्रोताओं को। तो देखो फिर आपने मौसम की बात अब करने वाले हैं हम, तो ये देखो जो भी श्रोता फेसबुक पेज से लाइव देख रहे हैं वो देख सकते हैं कि हमने तो भाई सर्दियां डिक्लेयर कर दी हैं। थोड़ा सा तबीयत भी नासाज है क्योंकि कई बार जुकाम लग जा रहा है, कई बार ऐसा फील हो रहा है कि हल्की हल्की सी जो हरारत है शरीर में वो हो रही है और साथ में हल्का हल्का सा फीवर भी महसूस हो रहा है। तो हमें लगा कि इससे पहले ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए तो क्यों नहीं अपनी संभाल खुद ही कर ली जाए। और जब मैं स्टूडियो की तरफ आ रही थी तो अमृत वर्षा भी हुई, क्योंकि ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं थी तो मैं उसे अमृत वर्षा ही कहूँगी। 3-4 दिनों के बाद ये बौछारें पड़ी हैं आज, और हवा भी तो काफ़ी चली है ना। आप सभी लोगों ने देखा हवा कितनी चली। तो हवा की गति अभी करीब 4-7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से थी। आज उम्मीद ये जताई जा रही थी कि बहुत कम वर्षा की संभावना है, लगभग 4-14% तक, और वो हो गई है। अभी इस वक्त स्टूडियो के बाहर कैसा मौसम है वो मुझे तो नहीं पता, क्या पता थोड़ी थोड़ी रिमझिम बरसात हो ही रही हो। इंद्रजबाला जी कह रही हैं गुड इवनिंग मैम, और स्वेटर पहन लिया जी। हाँ बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ कि स्वेटर मैंने पहन लिया। और आप लोग भी अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिए क्योंकि ये बदलता हुआ मौसम है और बदलता हुआ मौसम हमेशा ही ख़राब करके जाता है आपकी सेहत को। हाँ जी हाँ बिल्कुल, सबसे पहले अपनी सेहत और बाकी सभी काम बाद में। बिल्कुल सही कह रही हैं आप इंदु जी, और आपके भी घर में छोटे बच्चे हैं उनका भी ध्यान रखिए। सभी श्रोताओं को हम कहना चाह रहे हैं कि ये बदलता हुआ मौसम भी ना, जैसे हम कहते हैं ना कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, तो ये वाकई में बड़ा बेईमान होता है भैया, इससे बच के रहना। और हवा में नमी है आज 72%, और इस वक्त 24 डिग्री सेल्सियस तापमान गूगल बाबा दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है इस बात की, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम होगा। अब भी अपने अपने लेवल पर सर्च कर लीजिए। तो चलिए कार्यक्रम में पहला गीत आपको सुनवा दूं। और ये गीत है शूरवीर फिल्म का, मोहम्मद अजीज की आवाज़।

दोस्तों कहते हैं कि इंसान चला जाता है, वक्त गुजर जाता है, लेकिन जो पीछे छूट जाती है वो है आवाज़। और आवाज़ हवाओं के ज़रिए फिजाओं में तैरती रहती है। आज जब मैंने इस शो की शुरुआत की ना, तो दिल में बस यही ख्याल आया कि रेडियो भी तो एक ऐसा ही माध्यम है, हमारी रेडियो भी एक ऐसी ही खूबसूरत वादी है जहाँ मेरी और आपकी आवाज़ें आपस में मिलती हैं, बातें करती हैं और हमेशा हमेशा के लिए इस सफ़र की याद बन करके यहीं पर रह भी जाती हैं। जैसे कि इस गीत के बोल कहते हैं कि आज की बातें ये कल भी कहेंगी, ठीक वैसे ही आज इस शो में जो यादें हम और आप मिल करके बुनेंगे वो हमेशा फिजाओं में गूंजती रहेंगी। तो चलिए इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुन रहे हैं हम ये गीत, आज का पहला गीत, पहला नगमा बेहद ख़ास मोहम्मद अजीज़ और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में।

आवाज हमारी भी इसी वादी में रहेगी, बस आपको सुनाई देगी मेरे प्यारे से दोस्त माइक के थ्रू।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से हम बोल रहे हैं। कार्यक्रम है गुड इवनिंग धर्मशाला और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट

का नाम ज्योति पठानिया। तो चलिए श्रोताओं, आज की तारीख की बात कर लें हम। 24 सितंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर NSS दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसका इतिहास वैसे आपने जान लिया होगा। आज सुबह के कार्यक्रम में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी वर्ष में 24 सितंबर 1969 को भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS की औपचारिक शुरुआत की गई थी। और इस दिन का मुख्य उद्देश्य स्कूली और कॉलेज के छात्रों के बीच भीतर स्वैच्छिक समाज सेवा यानी वॉलंटियरली कम्युनिटी और सर्विस और अनुशासन और राष्ट्र निर्माण की भावना को बढ़ावा देना था, और अभी भी यही उद्देश्य है। और आदर्श वाक्य जो है NSS का, मोटो जो है वो है NSS का प्रसिद्ध, नॉट मी बट यू, यानी कि स्वयं से पहले आप हैं। और इस दिन देश भर के विश्वविद्यालयों, कॉलेजेस और स्कूलों में NSS स्वयं सेवकों द्वारा रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, साक्षरता जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण जैसे सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

श्रोताओं, इसी के साथ मुझे आपको एक जानकारी भी देनी है जो कि इसी से संबंधित है कुछ कुछ। कुछ दिनों पहले मुझे कॉलेज विजिट करने का मौका मिला, अभी बस एक दो दिन ही हुए हैं, क्योंकि कॉलेज में मनाया जा रहा है टूरिज्मो त्रिगर्त कार्निवल और ऑडिटोरियम में हम गए थे, वहाँ पर कार्यक्रम देखा। जब शुरू हुआ था वो कार्यक्रम जिस दिन, उस दिन भी मैं आपके साथ यहाँ पर बतिया रही थी सुबह के वक्त, और एकदम से फ़ोन कॉल आया कि आज इस तरह से कार्यक्रम है और देख लीजिए अगर आप पहुँच सकते हैं तो ठीक है। मैंने कहा हाँ ओके, हम आते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। और विविधता में एकता देखने का जो मौका है वो मुझे मिला वहाँ पर, सभी कल्चर्स जो हमारे हिमाचल प्रदेश के सारे ही वहाँ देखने को मिले। कोई किन्नौरी नृत्य था, पंजाबी डांस था, सब कुछ, मतलब गुरखाली नृत्य, क्या नहीं था वहाँ पर। और ये जो एक हफ्ते का ये कार्यक्रम रहता है ना पूरा कॉलेज ऑडिटोरियम में, कल सिंगिंग कंपटीशन है, परसों डांस कंपटीशन है, और जो ग्रुप डांस और एकल डांस था वो कंपटीशन हो चुका है, और उसके बाद जब 27 तारीख को ये ओवर होगा तो उस दिन बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। जो जिन जिन बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था उसमें रंगोली कंपटीशन था और क्यूजीन, जो लोगों ने बच्चों ने फूड बनाए थे, कि मतलब कोई एक फील्ड ऐसी नहीं थी जो छोड़ी गई हो इस पूरे के पूरे त्रिगर्त टूरिज्मो त्रिगर्त कार्निवल में। वैसे तो इस कार्निवल में पूरा का पूरा कॉलेज ही हिस्सा लेता है। कई बार होता है ना कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपने अलग अलग कार्यक्रम करवाते हैं, कुछ कोई मैथ्स वाले जो हैं वो अलग कार्यक्रम करवा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस वाले अपने अलग करवा रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा कार्यक्रम होता है पूरे साल में एक ही बार होता है लेकिन हर साल होता है, जिसमें कि बीवर्क डिपार्टमेंट और साथ में जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है वो मिल करके इस कार्यक्रम को करवाते हैं। और कोशिश की जाती है कि जितना भी टैलेंट है पूरे कॉलेज में बच्चों का निकल करके वो सामने आए एक ही मंच पर। और इसमें जो स्टेज होस्ट करते हैं ना वो भी सारे बच्चे ही होते हैं, उनका सच में टैलेंट जो शोकेस होता है ना वहाँ पर देख करके मज़ा आ जाता है। अगर आप भी इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड हों कभी जाइएगा, इन दिनों में 27 तारीख तक वो चलने वाला है, और देखिएगा एंजॉय कीजिएगा। हाँ, जो बात मैं मेन कहना चाह रही थी इस सारे संदर्भ में वो कहना भूल गई हूँ, लेकिन गीत के बाद आपको बताऊँगी। एनएसएस की बात शुरू हुई थी ना, तो एनएसएस के और जितने भी वहाँ पे वॉलंटियर बच्चे होते हैं, चाहे वो रोवर्स एंड रेंजर्स हो या फिर एनसीसी के बच्चे हों, उनके साथ भी एक चीज़ हुई है, उनको भी किसी न किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। वो क्या है वो मैं गीत के बाद बताऊँगी आपको।

लीजिए श्रोताओं, बातचीत करते करते और आपको गीत संगीत सुनाते सुनाते अब हमारी स्टूडियो की घड़ी में हो गए हैं 6:30। तो लीजिए घड़ियां मिला लीजिए अपनी। आपको पता है हम ज़्यादातर ऐसा क्यों बोलते हैं आपको कि घड़ियां मिला लीजिए, ताकि आप फिर से घड़ियों की तरफ जाएं। भाई बड़ी अच्छी लगती है ना कलाई में वो जो घड़ी होती थी हमारे पहले। अब तो हम मोबाइल मिलाते हैं अपने। अच्छा, मोबाइल ने कितना कुछ खा लिया ना, बहुत कुछ। हमारा दिमाग भी तो खा लिया है। जो काम हम कभी अपने दिमाग से कर लिया करते थे थोड़ा बहुत सोचने का, वो भी अब तो हमारा मोबाइल ही कर रहा, AI कर रहा है। सोचिए तकनीक कहाँ से कहाँ पहुँच गई। कभी हम सुनते थे कि कभी लोग जो हैं वो अपने साथ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेके चलेंगे जिससे कि चलते फिरते भी बातचीत हो पाएगी। हम बिल्कुल सच नहीं मानते थे उस चीज़ को, है ना। हम सोचते थे पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं लोग। आजकल हम सुन रहे हैं कि ऐसी गाड़ियाँ बन जाएंगी जो कि हवा में उड़ेंगी, तो शायद हो सकता है, वैसे तो बन चुकी हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद में हो जाएंगी उस दुनिया की अभी हम कल्पना नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब ऐसा होगा वो भी तो वक्त होगा ना। आज मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके हाथ में मोबाइल नहीं है और वो चलते फिरते बात नहीं करता। आपको पता है मेरा मोबाइल ना अभी कल ही गिर गया था दोबारा से, और मेरी ऐसी हालत हो गई कि भैया अब तो इसके बिना मेरा काम कैसे चलेगा। वैसे ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ के बिना काम चलता नहीं है। आप थोड़ा सा देखें, एक दो दिन अगर वो नहीं ठीक होता है तो भी तो हमारे काम चलते हैं ना, पहले भी चलते थे, आगे भी चलेंगे। परंतु आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि आगे आने वाला समय कैसे होने वाला है। हमें ना हर चीज़ पर अपनी जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म करनी पड़ेगी, कुछ हमें अपने ऊपर विश्वास भी रखना होगा। अब मैं आ जाती हूँ उस बात पर जो कि मैंने NSS के उस प्रोग्राम में सीखी, जहाँ पर कि NSS के बच्चों को कुछ बात की जा रही, उनके साथ बात की जा रही थी। NSS, NCC, रोवर्स एंड रेंजर्स, और भी बहुत सारे बच्चे जिन्होंने ट्रेनिंग की थी। और किस चीज़ की ट्रेनिंग वो मैं अभी बताती हूँ। पहले आप सुनिए कि हम 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से बोल रहे हैं।

और इसके साथ एक बार फिर से लाइव होने की कोशिश कर रहे हैं हम कनेक्ट करने की फेसबुक पेज से भी। तो चलिए अब आपको बताते हैं वो खास बात जो कि मैं ऑब्जर्व करके आई और अब आप लोगों तक वो चीज़ वो बात पहुंचानी है। देखिए श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि हम रहते हैं अर्थक्वेक प्रोन एरिया में, और वैसे हम ये तो नहीं कहते कि कब किस वक्त क्या होने वाला है या हो जाएगा, लेकिन हाँ हम अपनी तैयारी उन सभी चीज़ों के लिए उस वक्त के लिए रख सकते हैं ना। तैयारी तो हम वैसे भी अपने हर अच्छे बुरे के लिए रखते ही हैं, भविष्य में हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाएगी उसके लिए भी रखते हैं ना। तो हम क्यों भूल जाते हैं कि हम एक ऐसे एरिया में रहते हैं जो कि भूकंप की दृष्टि से बहुत ज़्यादा प्रोन है, बड़ा संवेदनशील है। हम इस बारे में बात तो ज़रूर करते हैं कि जो भवन निर्माण है वो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसकी सारी ट्रेनिंग चलती हैं। लेकिन जब मान लीजिए कोई आपदा आ गई, जैसे कि हाल फिलहाल में ही हमने देखा कि कई जगह पर अलग अलग तरह की आपदा आई है, आ भी रही है, तो अगर ऐसी कोई आपदा आ गई तो फिर हम अपने आप को कैसे ट्रेन कर रहे हैं, किस तरह से हम उस सिचुएशन से, उस स्थिति से निपटने के काबिल हैं या नहीं हैं, वो सारी जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, वो मैं सीख करके आई उस एक दो घंटे की बातचीत में जो की जा रही थी NSS NCC रोवर्स एंड रेंजर्स के कॉलेज के बच्चों के साथ। और वहाँ पर मुझे पता चला कि उनकी एक ट्रेनिंग करवाई गई कुछ दिनों की, उसमें से कुछ बच्चों के वॉलंटियरली नाम लिए गए थे, मांगे गए थे, और वो शिमला में वो लोग ट्रेनिंग करके आए। और उनको जो अब वो जो किट्स होती हैं ना, जैसे कि NDRF SDRF, आपने सुना होगा ना कि आपदा प्रबंधन, आपदा के समय पर ये सारी जो टीम्स हैं वो काम करती हैं, NDRF काम करती है, SDRF काम करती है, और भी बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वो काम करती हैं। तो ऐसे ही युवा आपदा एक संस्था बनाई गई है और वो काम करेगी अब कॉलेज के बच्चों के की तरफ से, मतलब कॉलेज के बच्चे उसमें सारे लिए गए हैं। उनमें से कई बच्चे जो ट्रेनिंग करके आ गए थे उनकी कहीं कहीं जॉब्स भी लग गई हैं, लेकिन उन्होंने जो ट्रेनिंग की है बेसिकली तो वो उनके काम आएगी ही, है ना। उनको वहाँ पर किट्स बांटी गई और उस किट में क्या क्या सामान था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हेलमेट, गॉगल्स, टॉर्च, ये सब कुछ सरकार द्वारा, यूं कहूँ सरकार का ही ये कार्यक्रम है, स्टेट गवर्नमेंट का, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे कि इस तरह से कार्यक्रम जो है वो करवाए जा रहे हैं, आप लोगों को तैयार किया जा रहा है इस चीज़ के लिए। तो बढ़ चढ़

के लोग भी अभी जो सिविल में है, सिविल लोग भी, उनके साथ भी इस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। तो उसमें एसडीआरएफ के या एनडीआरएफ के जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, खास करके वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, तो उसमें किट में लॉन्ग शूज़, ग्लव्स, हैंड ग्लव्स और साथ ही साथ हेलमेट, कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन में कभी भी अपनी टीम लेकर के जाना पड़े तो सबके पास वो चीज़ें होनी चाहिए। उसमें क्या है कि अपना बचाव पहले है, पहले खुद को बचाते हुए फिर दूसरों की हमने मदद करनी है। और यही चीज़ अब हमको, यानी कि हम लोगों को वार्ड में या फिर पंचायतों में भी सीखने को मिलेगी। और अगर कोई भी व्यक्ति जो इसमें इंटरेस्टेड हो तो वो अपने पंचायत प्रधान से मिल करके या फिर वार्ड मेंबर से मिल करके अपना नाम इस चीज़ के लिए लिखवा सकता है कि हाँ, हम भी वॉलंटियर करना चाहते हैं और हम भी इस सिचुएशन में देखना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो ये चीज़ मैंने वहाँ पर कल सीखी है। कहते हैं ना, आप कहीं भी जाइए, हर पल प्रति पल प्रति क्षण आप कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हैं। चाहे मेरे वहाँ पर 5 बज गए थे शाम को, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वाकई में आज मैंने कुछ फ्रूटफुल किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली। और यही चीज़ें जो हैं वो सिखाई जाती हैं हमारे बच्चों को। और जब हमारे बच्चे इन चीज़ों में जाते हैं ना, कभी पार्टिसिपेट करने लगते हैं, जैसे कब्ज़ एंड बुलबुल्स होता है, स्कूलों में भी होता है, और हम कई बार ना मना कर देते हैं कि अब इनकी ड्रेसेस कौन अरेंज करेगा, यूनिफॉर्म कहाँ से लाएंगे, ऐसे कैसे, कितना खर्चा। बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, यहीं से जो बच्चे हैं ना वो अच्छे नागरिक बनते हैं। और इसके साथ ही अब आपको ये भी बता दूं कि आज सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व भी है। 24 सितंबर 1534 को हुआ था उनका जन्म, और उन्होंने ही पवित्र शहर अमृतसर यानी रामदासपुर की स्थापना की थी। और श्री हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर की नींव रखने की योजना भी बनाई थी। और इसी वजह से राष्ट्रीय और धार्मिक स्तर पर ये दिन भी बेहद श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। तो आइए सुन लेते हैं एक बड़ा ही खूबसूरत सा गीत।

तो मुझे उम्मीद है पूरी पूरी कि ये जो गीत था ये आपके रूह तक उतर गया होगा। रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 एफएम रेडियो से आप सुन रहे हैं अपने पसंदीदा चैनल से कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। चलिए कार्यक्रम में विचार ले लें। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरों की बुराई करने का समय ही ना मिले। समझ गए आप कि तरक्की में ही अपने आप को झोंक देंगे, अपनी ही तरक्की में। मतलब हमारा जो कंपटीशन है ना, वो हमारे अपने साथ ही होना चाहिए, ना कि किसी और के। हाँ, किसी और के रेस जरूर करो पर जलो नहीं, और उससे आगे निकलने की मत सोचो, अपने आप से आगे निकलने की सोचो। जो आज आप कर रहे हो कुछ भी अच्छा, अगले दिन उससे भी एक स्टेप अच्छा करो, क्योंकि हम कभी भी परफेक्ट नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है। हम यहाँ से जब आपसे बात करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, तो हमें भी पता लग जाता है, कई बार नहीं भी चलता है, लेकिन कई बार आप लोग जो हैं वो हमें बता देते हैं कि आपने ये गलती कर दी है, इसको सुधार लीजिए। और या फिर हमें भी कई बार एहसास हो जाता है कि भैया हमसे ये गलती हो गई है, आगे के लिए थोड़ा सा ध्यान से संभल के चलना है। छह बजकर 45 मिनट हो चुके हैं। अब आपको मैं ये बता दूं कि विश्व समुद्र दिवस भी हम आज ही मना रहे हैं। ये दिन हर साल सितंबर के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है, जो कि संयोग से 24 सितंबर आज 2026 को पड़ा। इसका उद्देश्य है वैश्विक जहाजरानी यानी शिपिंग उद्योग, समुद्री सुरक्षा और समुद्री पर्यावरण के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना। कुछ बहुत ज़्यादा नहीं हो गए हैं ये तटीय, अभी हमने कुछ दिन पहले ही विश्व तटीय स्वच्छता दिवस मनाया है, उससे पहले हमने मार्च में मनाया था जल दिवस, है ना। और इस तरह से करते करते करते हमने कई सारे जो दिवस हैं वो जल के ऊपर ही मना डाले हैं। लेकिन क्या वाकई में हम जल निगरानी दिवस भी मनाया था हमने अभी इसी महीने, है ना। तो क्या वाकई में हम जल के प्रति इतने संवेदनशील हैं, या हम बस तभी हमें उसकी कीमत महसूस होती है जब हमें वो नहीं मिलता है और हम बड़े प्यासे होते हैं, या हमारे कोई काम अटके होते हैं तो जब नलों में पानी नहीं आता तो हमें उसकी कीमत का एहसास होता है, जब आता है तो फिर हम उसे व्यर्थ ही बहने देते हैं। ऐसा देखिए ना, इन सभी दिवसों का भी तभी फायदा है ना, जो वाकई में हम इनको अपने जीवन में उतार लें, कुछ सीखें कि भैया ये दिवस है। जैसे अभी मैंने आपको इस दिवस के बारे में, हम क्यों बताते हैं आपको यहाँ से दिवसों के बारे में, ताकि इन सब बातों को आप सोचें, समझें और कहीं ना कहीं किसी एक विषय पर तो काम करना शुरू करें। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक विषय चुना है कि हमें हमारी जो धर्मशाला है उसे बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल क्लीन रूप में देखना है। और इसमें कौन कौन से लोग हैं, क्या क्या कार्य कर रहे हैं, बहुत जल्द ही आपके सामने आएगा और मैं यहाँ से भी आपको बताऊंगी। और किस तरह से हम ये कार्य कर रहे हैं, इसमें पहले हम चार लोग थे और चार लोगों के बाद हमारा ये ग्रुप जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। अब हम प्रशासन के साथ मिलकर भी काम करेंगे और जितनी भी संस्थाएं यहाँ पर सफाई पे, स्वच्छता पे काम करती हैं, उन सब के साथ मिल करके हम चलने वाले हैं और आप लोगों के घरों घरों तक पहुँचने वाले हैं। बस इंतज़ार कीजिएगा हमारा। आपकी समस्याएं भी जानेंगे और उनका निवारण कैसे हो सकता है वो भी आप
आपको बताएंगे, और साथ ही में अगर आप अपनी बात कहीं तक पहुंचाना चाहते होंगे तो उसमें भी मदद आपका आपकी वो ग्रुप ज़रूर करेगा। और भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं उसके बारे में भी हम कार्यक्रम में आगे करेंगे बात। अभी फ़िलहाल बातें मुझे लगता है बहुत सारी हो गई हैं और गीत बहुत कम सुनवाए हैं हम अभी तक हमने आपको, तो चलिए आप कहीं कोई शिकायत ना करें तो आपकी शिकायत करते हैं दूर। लीजिए सुनिए ये गीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं। फिल्म का नाम हीरा पन्ना।

पहला पन्ना फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल स्वरों में। 91.2 मेगाहर्ट्स रेडियो गुंजन धर्मशाला से मैं बोल रही हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। कार्यक्रम है गुड इवनिंग धर्मशाला। श्रोताओं चलिए हम कार्यक्रम में आगे बढ़ें और अब आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय बघेल सप्ताह मनाया जा रहा है। सितंबर के आखिरी सप्ताह 18 से 24 सितंबर को बघेलों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। उसका समापन 24 सितंबर के आसपास होता है। और एक और डे भी है दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विराम चिन्ह दिवस। हालांकि इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी, लेकिन अब इसे वैश्विक स्तर पर सही व्याकरण और विराम चिन्हों के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। जानते हैं ना आप वो एक्सक्लेमेशन

अपने पहले ही प्रयास में 2014 में मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया था। और ऐसे करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना था जिसने बेहद कम बजट में एक कीर्तिमान स्थापित करके पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। इसरो का मंगलयान मिशन याद है ना आपको, सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया जिससे कि भारत अपने पहले ही प्रयास में सफल होने वाला एशियाई पहला एशियाई देश और दुनिया का पहला देश बना। और 2009 में भारत के पहले चंद्रयान एक मिशन ने चंद्रमा की सतह पर जल के अणुओं का पता लगाने में मदद की और इस खोज की पुष्टि हुई और इसे विश्व स्तर पर प्रकाशित किया गया।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से हम बोल रहे हैं और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। श्रोताओं, हमें लगता है कि किसी तकनीकी कारण से शायद आप ये जो न्यूज़ हैं ये नहीं सुन पाए हैं ठीक से, या शायद आप सुन ही नहीं पाए हैं। हमें कुछ ख़ास आइडिया नहीं है, पर हो जाता है कभी कभी ऐसा। अब बढ़ते हैं हम कार्यक्रम में आगे, जिसके लिए हमें वैसे खेद भी है कि आप इसे नहीं सुन पाए। कोशिश तो हम लगातार कर ही रहे थे यहाँ से, लेकिन कई बार नहीं हो पाती हैं चीज़ें समय पर, और वाकई में ये बड़ी अजीब सी दास्तां हो जाती है फिर। चलिए, अब आपको एक गीत सुनवा देते हैं, फिर करेंगे आपसे बाद में बातचीत। थोड़ा मस्ती भरा गीत है ये, मिल करके थोड़ी सी मस्ती भी कर लेते हैं।
1: दूं तुम्हें
2: हाँ,
0: दीवार फिल्म का गीत,
2: ना
0: आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें।
1: आज क्या है,
2: क्या है?

दीवार फिल्म का गीत आपने सुना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। छोटा आवाज़, तबीयत थोड़ी सी नासाज है, अगर मेरी आवाज़ थोड़ी कम पहुंच रही हो आप सभी तक तो कृपया करके क्षमा करिएगा। कोशिश मेरी पूरी है कि मैं बिल्कुल खुल करके आप लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाऊं। पहला गीत यही था ना, आवाज़ हमारी इसी वादी में रहेगी। तो मैडम भीकाजी कामा की जयंती भी है आज, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली और विदेशी धरती यानी जर्मनी पर पहली बार भारतीय झंडे का प्रारंभिक रूप फहराने वाली महान क्रांतिकारी मैडम भीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। और 1983 की वर्ल्ड कप विजेता टीम के दिग्गज भारतीय क्रिकेटर महेंद्र अमरनाथ का जन्म 1950 में 24 सितंबर को ही हुआ था।

और इसी जानकारी के साथ आगे बढ़ते हुए अब लेते हैं एक और जानकारी जो कि आ रही है हमारी न्यूज़पेपर हेडलाइंस से। अब देखिए इसमें ना दो खबरें हैं मेरे पास और दोनों में ना विरोधाभास है। पहली खबर है टांडा में कैसे हो सुधार, जिधर वार्ड बॉय बने हैं डॉक्टर और सिक्योरिटी कर्मचारी बन गए थानेदार। निजी अस्पतालों से सीखो कि कैसे व्यवहार किया जाता है, किसी बुजुर्ग ने कहा है। आएंगे उस पर भी, अंदर कोई दवा नहीं और बाहर है भारी भीड़। बंद पड़े हैं पंखे, इलाज के लिए लंबी लंबी डेट्स मिल रही हैं। सुई, रुई, पैरासिटामोल, एलर्जी की कोई भी दवा नहीं मिल रही। पता आप सभी को इस सारी चीज़ों के बारे में है, लेकिन सामने कुछ कुछ लोग आ रहे हैं, बोल बहुत कम लोग रहे हैं। अब हमें लगता है कि बड़े स्तर पर शायद बातचीत करने की ज़रूरत हो गई है इन सारी चीज़ों पर। एक वरिष्ठ नागरिक को मेडिसिन विभाग में तैनात एक सुरक्षा महिला कर्मी ने इतनी बुरी तरह से डांटा कि वो शर्म से खुद ही शर्मसार हो गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ये सुरक्षा कर्मी तो ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि हमने इस अस्पताल में आकर के गुनाह कर दिया है। जबकि उनका ये कहना है कि कल के बच्चे हमें यहाँ ऐसे डांट लगाते हैं कि मानो वो अपनी जेब से हमारा इलाज करवा रहे हो, जबकि ऐसा तो कुछ नहीं है। इस उम्र में भी ऐसा बर्ताव हमारा मर्ज दूर करने की बजाय और पीड़ा को बढ़ाता है। और दूसरी बात कि अस्पताल में तो कुछ मिल ही नहीं रहा, सिर्फ डॉक्टर जो देखते हैं तो जो बाहर से ही सारी चीज़ें हैं वो ही मंगवा मंगवा करके हमें अपना इलाज एक तरह से खुद ही करना पड़ रहा है। और यदि दवाई की बात करें तो अस्पताल के अंदर जहां मुफ्त दवाइयां मिलती हैं, कभी इतनी लंबी लंबी लाइनें होती थी, लेकिन अब वहां पर दवाइयां न मिलने के कारण कोई भी वहां दवाइयां लेने नहीं आ रहा है। इसमें दिलचस्प बात यह भी है कि बाहर दवाइयों की दुकानों में इतनी भीड़ है कि वहां पर जाकर के भी उन्हें कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल के अंदर न तो डॉक्टर्स, नर्सेस या अन्य स्टाफ के उपयोग में आने वाले ग्लव्स, रुई, सुई, पैरासिटामोल, दवाई, इंजेक्शन, खांसी सिरप इत्यादि की कोई भी बड़ी या छोटी दवाई नहीं मिल रही है। और इस पर आशीष सिंघमार जो हैं स्वास्थ्य सचिव, उनका ये कहना है कि यदि ऐसा है तो मुझे लिखित शिकायत भेजें, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। नियमों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये जो लोग सोशल मीडिया पे बना बना के डाल रहे हैं, आप बीती बता रहे हैं, तो क्या अब ये लिखित कार्रवाई कब होगी? लिखित शिकायत जब तक वो भेजी जाएगी तब तक तो मुझे लगता है जो मरीज़ है ना वो शायद हमारे बीच में रहेगा ही नहीं। मैं कोई वैसे गलत शब्द इस्तेमाल करना नहीं चाह रही थी, लेकिन देखिए ना, आप खुद ही सोचिए, जब तक उस लिखित शिकायत वो आप तक पहुंचेगी, उस पर आप कार्रवाई करेंगे लिखित रूप में, तब तक तो बहुत कुछ हो सकता है ना। इतना समय नहीं होता है किसी के पास, सब लोग अपने मरीज़ को प्राइवेट अस्पताल में लेकर के चले जाते हैं। दूसरी खबर जो आ रही है वो भी टांडा अस्पताल से ही संबंधित है। 15 दिनों में मातृ शिशु अस्पताल टांडा में शुरू होंगी सभी सेवाएं। है ना विरोधाभास? बहुत दिन हो गए थे खबरों की रोस्टिंग की नहीं मैंने, तो आज मेरे सामने जब ये खबरें आई तो मुझे लगा कि बात इस पर की जानी चाहिए। अब अस्पताल प्रशासन ने इधर उधर से जरूरी मशीनरी उपलब्ध करवा ली है, जबकि नई मशीनों की खरीद के लिए सरकार से करीब 3 करोड़ रुपए का बजट मांगा गया है। अस्पताल का रैंप भी तैयार हो चुका है और करीब 1 वर्ष से यहां पर ओपीडी संचालित की जा रही है मातृ शिशु अस्पताल में, जो कि टांडा में बना है। और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मिलाप शर्मा ने बताया है कि कुछ मशीनें अस्पताल में उपलब्ध करवा दी गई हैं और शेष सुविधाएं भी 15 दिनों के भीतर शुरू कर दी जाएंगी।
और आवश्यक मशीनरी की सूची तैयार करके सरकार को बजट उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव भेजा गया है। गौरतलब है कि करीब 3 वर्ष पहले मातृ शिशु अस्पताल के लिए आई कुछ मशीनों का इस्तेमाल न होने के कारण उन्हें अन्य विभागों को उपलब्ध करवा दिया गया था। तो श्रोताओं, ये है असली कहानी और ये है ये दोनों विरोधाभासी खबरें जो हमने आप तक पहुंचाई हैं। अब किस पर हम यकीन करें कि ये मातृ शिशु अस्पताल शुरू होने वाला है तो यहाँ पर सारी सुविधाएं मिलेंगी, या क्योंकि जो भाभी माता होती है उसे तो सारी सुविधाएं मिलती ही हैं, ऐसा तो कहा ही जाता है, और पता नहीं अब ये भी हो पाएगा या नहीं। आगे आने वाले दिनों में इस पर भी खुलासा हो जाएगा। खैर, हमारे पास खबरें और भी हैं, फिलहाल हम चलेंगे फिर से गीत की ओर।

जी समझ गए आप, पैसा है तो, पैसा है तो फिर क्या नहीं हो सकता है। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से सुन रहे हैं आप ये कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला, और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। और पैसे के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं हम, अब आप कहेंगे कि भैया करना भी पड़ेगा, क्योंकि आज के का जो ज़माना है वो बिना पैसे के नहीं चल सकता है, क्योंकि अब हम उस दौर में नहीं रहे कि जहाँ पर बड़ी शांति होती थी और पैसे की कोई मतलब हम ज़्यादा अहमियत उसको नहीं देते थे, है ना। चलिए इससे संबंधित एक खबर आपको बताती हूँ, वैसे केयरफुल आप लोग भी रहिएगा, हम बड़े सिटीज़ में ही सुनते थे कि ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर भी अब होना शुरू हो गया है। लोग आते जाते मुझे नहीं पता कि किस वजह से, क्या उनका माइंडसेट होता है, या किसी वो नशे वशे का शिकार होते हैं, लोगों के गलों से कानों से जो भी उन्होंने पहना होता है गहना, वो छीन छीन करके भाग रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया हमारे सामने आया, संसारपुर टेरेस में बुधवार शाम को करीब 5 बजे बाइक सवार युवक करीब 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला के कानों की बालियां झपट करके फरार हो गए। वारदात तो वैसे महिला के घर के समीप ही हुई, तो अब हमें शायद कुछ भी पहन करके घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, मतलब हम घर से अगर बाहर जाएं तो ऐसे ही जाएं, क्योंकि हमने कुछ वीडियोस भी तो देखे हैं ना कि लोग कैसे लेडीज़ के पास से, खासकर क्योंकि आदमी लोग तो क्या ही पहनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक चेन पहन लेंगे या अंगूठी हाथों में, परंतु आदमियों को इतनी जल्दी हाथ ये बच्चे डालते नहीं।

चलिए अब विद्युत संबंधी खबर हम ले लेते हैं। विद्युत लाइन ट्रांसफार्मर स्थापित करने और विद्युत लाइनों के रखरखाव सामान्य रखरखाव के चलते 25 सितंबर को बड़ोल, लोअर बड़ोल, अपर बड़ोल और साथ लगते अन्य क्षेत्रों में प्रातः 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक या फिर कार्य पूर्ण होने तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। और इसके साथ ही दुर्गेशारण्य इंटरनेशनल जियोलॉजिकल पार्क के निर्माण कार्य के चलते 25 सितंबर को द्राक्टा, दरकाटा 33/11 केवी सबस्टेशन में यार्ड बदलाव और इलेक्ट्रिकल फिटिंग का काम किया जाएगा, जिसके चलते सुबह 10 बजे से कार्य पूरा होने तक बनेदी हट्टी, रानीताल, गालियां, दौलतपुर, दरकाटा और नंदलू फीडरों के जो बिजली आपूर्ति है वो बाधित रहेगी। इससे 30 से अधिक गांव प्रभावित होंगे। तो सहायक अधिशासी अभियंता आदित्य सूद ने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है। चलिए अब हम एक बड़ा प्यारा सा मध्यम मध्यम गति वाला गीत सुन लेते हैं।

कभी हाँ कभी ना फिल्म का गीत कुमार सानू की आवाज में भी आपने सुना। जतिन ललित का संगीत था और फिल्म हमने आपको बता दी कभी हाँ कभी ना। सच बताऊं दोस्तों, स्टूडियो में इस वक्त इस गीत की धुन जब हवा में तैर रही थी ना, और मैं भी पूरी तरह से इस गीत के सुकून में खो गई थी। ऐसा लग रहा था कि बस वक्त यहीं पर ठहर जाए और मैं बस इस संगीत को महसूस करती रहूं। वैसे सिर्फ मैं ही नहीं खोई, हमारे श्रोता भी खो गए थे, है ना।

लेकिन भाई देखो, होश में तो हमें आना ही पड़ेगा। आगे का कार्यक्रम भी बाकी है जिसके बारे में हमें आपसे बातचीत करनी है। तो चलिए आप भी निकल आइए फिर उस गीत के खुमार से बाहर। अभी और भी गीत हैं आप सभी के लिए, उनमें भी तो डूबना बाकी है।

0: जानकारियों का सिलसिला हमने शुरू किया है तो एक जानकारी और आ रही है। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के धारकंडी क्षेत्र के रड़कमार में आज सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम आयोजित सरकार के द्वारा गांव के द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शाहपुर के विधायक और उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने क्षेत्र की 11 पंचायतों से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए, यानी जल्द से जल्द उसका समाधान कर दिया जाए। केवल सिंह पठानिया ने कहा कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में ये पहला सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम है। और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में शुरू किए गए इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के घर द्वार पहुंच करके उनकी समस्याएं सुनना और उनका समाधान सुनिश्चित करना है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कार्यक्रम में सामने आई समस्याओं पर की गई कार्यवाही को 1 माह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जाए। और उन्होंने HRTC अधिकारियों को धारकंडी से टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए बस सेवा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। बच्चों की समस्याओं पर आश्वासन दिया कि स्कूल में बायोलॉजी का पद शीघ्र भरा जाएगा और लोक निर्माण विभाग को बरसात से क्षतिग्रस्त जो सड़कें हैं उनका शीघ्र मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। दरीनी अस्पताल में डॉक्टरों के 4 पद भी शीघ्र भरे जाएंगे और शाहपुर कुठारना करेरी के बीच सेवा के लिए बस सेवा शुरू करने की भी जानकारी दी गई है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को दरीनी स्कूल से घरनी गांव के लिए वीर चक्र से सम्मानित राम सिंह जम्वाल जी के घर तक सड़क बनाने के निर्देश भी दिए हैं। और कार्यक्रम में धारकंडी की 11 पंचायतों के लोगों ने सड़कों, डंगों, तालाबों, बस सेवा सहित विभिन्न समस्याओं से संबंधित 55 मामले प्रस्तुत किए थे। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को नशे से दूर रहने की चिट्टा मुक्त हिमाचल शपथ भी दिलवाई गई।
1: Latest update.

प्यासा सावन फिल्म का गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की युगल स्वरों में आप सभी ने सुना 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। और श्रोताओं, बस जल्दी जल्दी में मैं ले लेती हूँ एक प्रेरणादायक कहानी। हडसन नदी के किनारे बड़ी भारी भीड़ जमा थी और वहाँ मौजूद लोग अपनी समझ से एक मूर्खतापूर्ण काम की हंसी उड़ाने के लिए आए हुए थे। और उस काम को करने वाला जो मूर्ख था वो था रॉबर्ट फुल्टन। उसने भाप से चलने वाले पानी के जहाज का निर्माण किया था और उसी का प्रदर्शन करने वो जा रहा था। समझ गए आप कि वो पहली बार उसको दिखा रहा था लोगों को कि ये भी हो सकता है। तो उसके मित्र उसे समझा रहे थे कि वो एक ऐसा जोखिम भरा काम था जो कि उसे नहीं करना चाहिए। हडसन की तेज धारा में उसका जलयान डूब जाएगा और उसके साथ वो भी नहीं बचेगा। और लोगों का ये भी कहना था कि आज तक तो बिना चप्पों के हडसन नदी की लहरों को चीर करके किसी ने जलयान चलाया ही नहीं। और फुल्टन किसी की भी परवाह किए बगैर अपने काम में व्यस्त रहा। सारा धन लगा दिया उसने, कई वर्षों तक मेहनत करके वो जहाज बनाया, किसी की बात उसने नहीं मानी। तो लोगों ने उसे यही कहा कि वो मूर्ख ही नहीं है बल्कि पागल भी है, उसे मरने का शौक है। देखते ही देखते फुल्टन ने हडसन नदी की तेज धारा में अपना जहाज उतारा और नदी की धारा को चीरता हुआ जहाज तेजी से आगे बढ़ने लगा। लोग आश्चर्य से देख रहे थे। थोड़ी ही देर में जहाज नदी के दूसरे तट पर पहुंच गया और फुल्टन अपनी सफलता पर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। कुछ दिनों बाद लोगों की तालियों का सिलसिला शुरू हुआ। लोग पूछने आए कि भैया तुमने ऐसा कैसे कर लिया। मतलब जब तक हम कोई चीज़ करके सामने वाले को दिखाते नहीं है ना, तब तक लोग हमेशा यही समझते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। तो ये थी आज की प्रेरणादायक कहानी। जो अच्छे भविष्य के सपने देखता है उसके लिए हडसन नदी पार करना असंभव नहीं। यदि हम आज कष्ट उठाते हैं तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए कि कल हमारे दिन बदलेंगे। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं प्रादेशिक समाचारों की ओर, जो कि प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज की मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा HPMIS पोर्टल से सेब खरीद में आई पारदर्शिता। अब तक 8000 मीट्रिक टन से अधिक सेब की खरीद। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में 17 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को मिला स्वच्छ पेयजल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री के नशा मुक्त भारत के संकल्प को सफल बनाने के लिए सभी से सहयोग का किया आह्वान। स्वदेशी ड्रोन तकनीक विकसित करने के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हमीरपुर के छात्र सर्वेश शर्मा को रक्षा मंत्रालय ने प्रदान किए 3.5 करोड़ रुपए। और प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों ने अगस्त माह का वेतन अभी तक न मिलने के विरोध में सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार द्वारा मंडी मध्यस्थता योजना के तहत अब तक 8000 मीट्रिक टन से अधिक सेब की खरीद की गई है और 17000 से अधिक बागवान HPMIS पोर्टल पर पंजीकरण करवा चुके हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि HPMIS पोर्टल से सेब की खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रणाली के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने बागवानों के हितों की रक्षा और राज्य की बागवानी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने को विशेष प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि MIS के माध्यम से खरीदे गए सेब के प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन में भी मदद मिलेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस वर्ष 1 अगस्त से 213 सेब संग्रहण केंद्रों पर खरीद प्रक्रिया जारी है और ये केंद्र HPMC व हिमफेड द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। सेब खरीद प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा के माध्यम से देश सेवा के मंत्र और समर्पण के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरा कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। इस अवसर पर हम विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किए गए जल जीवन मिशन के बारे में। इस योजना का हिमाचल प्रदेश में भी लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
1: केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में देश के दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों तक नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन का हिमाचल प्रदेश में लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल प्रदेश देश का एक ऐसा पहाड़ी राज्य बन गया है जहां आज लगभग हर घर में नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है। प्रदेश में अब तक लगभग 17,09,000 ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाया जा चुका है और जल जीवन मिशन के प्रावधानों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। शिमला जिला के बढ़ई गांव की निवासी ममता ने बताया कि जल जीवन मिशन से उनके गांव में हर घर तक नल से जल की सुविधा मिल रही है, जिससे विशेष तौर पर महिलाओं को बड़ी राहत मिली है।
2: मेरा नाम ममता है, मैं शिमला की रहने वाली हूँ। हमारी ग्राम पंचायत बढ़ई, हमारे गाँव में पहले पानी की बहुत परेशानी होती थी। जब से जल जीवन मिशन के तहत हमारे गाँव में घर घर नल लगे, उसके बाद हमारी जितनी भी महिला और बहनें हैं उनके लिए बहुत सुविधा हुई है, क्योंकि बहुत दूर से हमें पानी लाने पड़ता था। अब जब नलके लगे हैं तो हमें बहुत राहत मिली है और हमें शुद्ध पानी भी आता है। मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जिन्होंने हमें घर घर नल दिया।
1: वहीं आकांक्षी जिला चंबा के रहने वाले अजय शर्मा ने भी जल जीवन मिशन के तहत दुर्गम क्षेत्रों तक नल से जल पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है।
3: नमस्कार, मेरा नाम अजय शर्मा है, मैं हिमाचल प्रदेश जिला चंबा का रहने वाला हूँ। जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण योजना है। मैंने भी इस योजना का बहुत लाभ उठाया है और जो मेरे गांव वासी उन्होंने भी हर घर में जो है वो नल लगा है। और एक बहुत अच्छी बात, जो वर्षा जल संग्रहण है, हमने भी इस प्रकार का टैंक बनाया होता है। जब भी बारिश होती है और जो उसका पानी होता है उस टैंक के माध्यम से जो स्टोर हो जाता है और जब भी हमें कोई भी जरूरत पड़ती है तो हम उस पानी का यूज कर लेते हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने जल जीवन मिशन ये योजना चलाई है।
1: भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की कार्यक्षमता मूल्यांकन और पेयजल गुणवत्ता में बेहतर प्रदर्शन को लगातार प्रोत्साहित किया है और जल शक्ति मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के तहत जल जीवन मिशन 2.0 के लिए प्रदेश को 258,07,00,000 रुपए की राशि का अस्थायी आवंटन किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इटली के मिलान शहर के अध्ययन प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण स्थलों, शिक्षण संस्थानों और औद्योगिक क्षेत्रों का दौरा कर देश व प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इसका तुलनात्मक अध्ययन किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय समुदाय और स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। कुलदीप सिंह पठानिया ने भारतीय मूल के लोगों से भारत में निवेश करने का आह्वान किया ताकि देश की आर्थिकी मजबूत हो सके। शिमला मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर घंडल के समीप आज एचआरटीसी की इलेक्ट्रिक बस और कार की टक्कर में कार सवार एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान सोलन जिला के अर्की तहसील के फांजी गांव के दयानंद, उनकी पत्नी हेमलता और माता विद्या देवी के रूप में हुई है, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल है। घायल को उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार बस में सवार किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई है और पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। बाकी के समाचार इस ब्रेक के बाद।
4: यार, दो दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है।
5: और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमेश।
6: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
5: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
6: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और जूते पहने, आसपास की झाड़ियाँ साफ रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत जांच और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: के बाद आपका स्वागत है। अब बाकी के समाचार। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2029 तक नशा मुक्त भारत का संकल्प लिया है, जिसे पूरा करने के लिए प्रत्येक देशवासी को अपनी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। पंजाब के आनंदपुर साहिब और गढ़शंकर में आयोजित नशा विरोधी यात्राओं में शामिल होने के अवसर पर आज उन्होंने ये बात कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि नशे के खिलाफ अब निर्णायक लड़ाई की तैयारी है और इसे जन आंदोलन का रूप देकर ही सफलता हासिल की जा सकती है। उन्होंने सभी से प्रधानमंत्री के नशा मुक्त भारत के संकल्प से जुड़कर नशे के खिलाफ लड़ाई में सहयोग का आह्वान किया। इस बीच जयराम ठाकुर ने 16वें वित्त आयोग के तहत हिमाचल प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं के लिए 3,744 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पंचायती राज मंत्रालय का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पंचायतों को सशक्त बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। रक्षा मंत्रालय ने हमीरपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बड्डू के छात्र सर्वेश शर्मा को भारतीय सेना के लिए स्वदेशी रुद्रा एजटी 1 स्पेक्ट्रा ड्रोन विकसित करने के लिए 3.5 करोड़ रुपए की अनुदान राशि प्रदान की है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने सर्वेश शर्मा को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि उनका ये नवाचार प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा और तकनीकी क्षमता को प्रदर्शित कर रहा है। उन्होंने कहा कि सर्वेश शर्मा द्वारा तैयार ड्रोन सीमा पर निगरानी में मददगार साबित होगा। धर्माणी ने कहा कि राज्य सरकार युवा नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है और युवा अब अपने सपनों को आत्मविश्वास के साथ साकार कर रहे हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवा सर्वेश शर्मा की इस उपलब्धि से प्रेरणा लेकर नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को अगस्त माह का वेतन सितंबर की 24 तारीख तक भी ना मिलने के विरोध में कर्मचारियों ने भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष मदन राणा ने कहा कि निगम के 1000 नियमित, 70 डेली वेज और 500 आउटसोर्स कर्मचारियों को अभी तक वेतन नहीं मिला है। उन्होंने इसके लिए निगम प्रबंधन और पर्यटन निगम के अध्यक्ष को जिम्मेदार ठहराया और कर्मचारियों का वेतन जल्द जारी करने की मांग की है।
7: हिमाचल प्रदेश का टूरिज्म का कर्मचारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। केवल मात्र 1500 कर्मचारी, जिसमें से 1000 रेगुलर और 500 आउटसोर्स पे लगे कर्मचारी, जिनको आज 24 तारीख हो गई है, तो एक महीना 24 दिन बीत जाने के बाद भी उनको आज उनकी सैलरी उनके अकाउंट में नहीं पड़ी है। टूरिज्म बचाओ बाली बगाओ, अगर प्रदेश के टूरिज्म को बचाना है तो ऐसे चेयरमैन को तत्काल प्रभाव से हटाना होगा।
0: मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने किसानों, बागवानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए अनेक सराहनीय योजनाएं आरम्भ की है। हमीरपुर में आज कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत सब्सिडी वितरण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जिला के 182 किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर करीब 26 लाख रुपए की सब्सिडी राशि जारी की गई है। सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर के लिए मेडिकल कॉलेज, अलाइड हेल्थ सर्विसेज कॉलेज और अत्याधुनिक मशीनें व रोबोटिक सर्जरी सहित कई बड़ी आधुनिक सुविधाओं का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की समस्याओं की सुनवाई के लिए वे मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार लगातार गांवों का दौरा कर रहे हैं और उनकी जरूरतों व मांगों के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत भी करवा रहे हैं। इस दौरान सुनील शर्मा बिट्टू ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में सब्सिडी की राशि भी हस्तांतरित की। सिरमौर जिला के दूरदराज इलाकों में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों को अब डिजिटल एजुकेशन और कंप्यूटर तकनीक की जानकारी मोबाइल कंप्यूटर वैन के जरिए मिलेगी। विधायक अजय सोलंकी ने नाहन में मोबाइल कंप्यूटर वैन को हरी झंडी दिखाने के अवसर पर कहा कि इसके माध्यम से पहली से बारहवीं कक्षा तक के बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन सहित AI के इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले चरण में क्षेत्र के दूरदराज व ग्रामीण इलाकों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में ये पहल की गई है।
8: कंप्यूटर एजुकेशन आने वाले समय में अनिवार्य होगा, उसी के मद्देनजर आज एक मोबाइल वैन को फ्लैग ऑफ किया है, जिससे ये सभी स्कूलों में जाकर छोटे बच्चों को भी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में फर्स्ट टू ट्वेल्थ तक के बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन देंगे। इसमें AI का टूल भी इन्होंने इंस्टॉल किया है। तो आजकल AI का भी जमाना है, आने वाले समय में सभी लोग स्किल्ड हों और कंप्यूटर एजुकेशन सभी तक पहुँचे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा HPMIS पोर्टल से सेब

0: का हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50
1: 92.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। और श्रोताओं, बस अब हमारा भी चलने का वक्त हो रहा है और आपसे मैं भी लेती हूं इजाज़त इसी वादे के साथ कि जल्द ही मिलूंगी आपसे फिर किसी दिन किसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रहे संदीप परमार और तकनीकी सहयोग मुझे मिला क्या हो गया सचिन कपूर से।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
1: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते अभी ठीक हो जाएगा।
0: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालें क्या?
2: अरे ठहरिए ठहरिए, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसे ऐसी बातें कर रहे
3: हैं। उठाओ उठाओ, अस्पताल ले जाओ भाई।
2: कमाल के हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवियों सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
0: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
4: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
5: नमस्कार। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
6: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे, कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे, आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया, क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला, आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा आप क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
7: कुछ मीठा बोलूं?
8: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
7: मैं खाने की बात कर रही थी।
8: अच्छा, एक खा कर गुलाब जामुन मंगा दो।
7: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना तुम।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। मैं हूं पिंकी। आइए सुनते हैं आज का समाचार बुलेटिन। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 6 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आएंगी। बिलासपुर, मनाली और प्रसिद्ध शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। हिमाचल हाईकोर्ट की कार्यवाही अब घर बैठे भी देख सकेंगे। मुख्य न्यायाधीश ने लाइव स्ट्रीमिंग सुविधा का उद्घाटन किया। प्रदेश के स्कूलों में नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 बार अतिरिक्त पौष्टिक आहार देने की योजना। क्लास 3 पेंशनरों को बकाया एरियर की पूरी राशि जारी करने के आदेश। परीक्षा में लापरवाही पर शिक्षा बोर्ड सख्त, कई केंद्र अधीक्षकों को नोटिस। घेपन झील की स्थिति खतरनाक, भारी तबाही की आशंका के बीच प्रशासन ने अलर्ट सिस्टम लगाने की तैयारी की। प्रदेश में अब घर से ही 4 हिस्सों में कचरा अलग करना होगा। नए ठोस कचरा प्रबंधन नियम लागू। 16वें वित्त आयोग के तहत प्रदेश की पंचायतों को 3,774 करोड़ रुपए की राशि मंजूर। अब समाचार विस्तार से।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 6 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आएंगी। समाचार के अनुसार उनके प्रस्तावित कार्यक्रम में बिलासपुर, मनाली और प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर की यात्रा शामिल है। राष्ट्रपति बिलासपुर में आयोजित एक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी और विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। इसके बाद उनके मनाली जाने और अटल टनल का दौरा करने की संभावना है। 7 अक्टूबर को राष्ट्रपति कुल्लू के प्रसिद्ध हिडिम्बा माता मंदिर में भी दर्शन कर सकती हैं। इसके बाद उनके नई दिल्ली लौटने का कार्यक्रम बताया गया है। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। संबंधित जिलों के प्रशासन और अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की कार्यवाही अब लोग घर बैठे ऑनलाइन देख सकेंगे। मुख्य न्यायाधीश ने लाइव स्ट्रीमिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। इस सुविधा का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और लोगों को अदालत की कार्यवाही तक आसान पहुंच उपलब्ध कराना है। हाईकोर्ट की ओर से पहले से ही कई डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिनमें केस स्टेटस, ई फाइलिंग, ऑनलाइन कॉज लिस्ट और वेबकास्ट जैसी सेवाएँ शामिल है। हाईकोर्ट की वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग और अन्य डिजिटल न्यायिक सेवाओं के विकल्प उपलब्ध हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि न्याय होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। इसी दिशा में लाइव स्ट्रीमिंग को महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। अब नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 बार अतिरिक्त पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस योजना के तहत नियमित मिड डे मील के अलावा सप्ताह में 2 बार अतिरिक्त पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। समाचार के अनुसार इसमें बच्चों की पसंद के अनुसार उबला अंडा या ताज़ा फल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था शामिल है। सरकारी व्यवस्था के तहत योजना की निगरानी प्रधानाचार्यों, मुख्याध्यापकों, स्कूल प्रबंधन समितियों और संबंधित अधिकारियों के माध्यम से की जाएगी। प्रदेश सरकार ने 31 जनवरी 2022 तक सेवानिवृत्त हुए क्लास 3 कर्मचारियों की पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के बकाया एरियर को लेकर आदेश जारी किए हैं। अक्टूबर में मिलने वाली सितंबर की पेंशन के साथ एरियर का भुगतान किया जाएगा। आदेश के मुताबिक 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए क्लास 3 कर्मचारियों को पहले से लंबित पेंशन और पारिवारिक पेंशन एरियर की 30% राशि जारी की जाएगी। इसके बाद यदि पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन एरियर में कोई राशि शेष रहती है तो उसका भुगतान किया जाएगा। संबंधित विभागों को आदेश के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाओं में लापरवाही बरतने वाले परीक्षा केंद्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। सीसीटीवी लाइव निगरानी के दौरान कुछ परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड के दिशा निर्देशों का पालन नहीं होने की बात सामने आई। इसके बाद संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षाओं की पवित्रता और पारदर्शिता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। जिन केंद्रों पर लापरवाही पाई गई है वहां केंद्र अधीक्षकों, उपकेंद्र अधीक्षकों और समन्वयकों से जवाब मांगा गया है। प्राप्त जवाब और सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लाहौल स्पीति की घेपन झील को लेकर प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। समाचार के अनुसार झील की स्थिति खतरनाक बताई गई है और कुछ ही मिनटों में भारी तबाही की आशंका जताई गई है। प्रशासनिक टीम ने मौके का निरीक्षण किया और झील तथा आसपास के क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया। विशेषज्ञों के अनुसार झील के आसपास लगातार निगरानी जरूरी है। समाचार में बताया गया है कि झील के पानी के अचानक बढ़ने की स्थिति में निचले इलाकों में खतरा पैदा हो सकता है। इसी को देखते हुए प्रशासन की ओर से अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। इसका उद्देश्य संभावित खतरे की जानकारी समय रहते लोगों तक पहुंचाना है। हिमाचल प्रदेश में ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। इसके तहत घरों, दुकानों, संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में कचरे को स्रोत पर ही अलग अलग करना अनिवार्य होगा। कचरे को खुले में फेंकने, जलाने और जमीन में दबाने के साथ साथ नालियों, जल स्रोतों और सार्वजनिक स्थानों पर डालने पर भी रोक होगी। कचरे को 4 श्रेणियों में अलग करने की व्यवस्था बताई गई है। इनमें रसोई से निकलने वाला गीला कचरा, सूखा कचरा, सैनिटरी कचरा और विशेष देखभाल वाले कचरे को अलग रखना शामिल है। प्लास्टिक, कांच,
धातु जैसी पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को अलग रखने पर भी जोर दिया गया है। इसके साथ ही स्कूलों में विद्यार्थियों को कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूक करने की योजना है। इसका उद्देश्य बच्चों में कचरा अलग करने और स्वच्छता की आदत विकसित करना है। हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण पंचायतों के विकास के लिए 16वें वित्त आयोग के तहत 3,744 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। यह राशि वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्षों की अवधि में उपलब्ध होगी। इस राशि से पंचायतों में पेयजल, स्वच्छता, सड़क, नालियों, सामुदायिक भवनों और पंचायत भवनों से जुड़े विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। कुल राशि का एक हिस्सा अनटाइड ग्रांट के रूप में और दूसरा हिस्सा टाइट ग्रांट के रूप में बताया गया है। टाइट ग्रांट का उपयोग निर्धारित क्षेत्रों जैसे पेयजल और स्वच्छता से संबंधित कार्यों के लिए किया जाएगा। पंचायतों को राशि के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। डिजिटल निगरानी और ऑडिट की व्यवस्था के माध्यम से खर्च का हिसाब किताब रखने पर भी जोर दिया गया है। आज बुलेटिन में BS इतना ही। धन्यवाद।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
1: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते, अभी ठीक हो जाएगा।
0: या फिर मुंह से जहर चूस के निकालें क्या?
2: अरे ठहरिए ठहरिए, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं।
3: उठाओ उठाओ, ठीक है, अस्पताल ले जाओ भाई।
2: कमाल के हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं, 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए,
4: समझे?
2: तो याद रखिए देवी और सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
0: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
5: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
6: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
7: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे। कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे। आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया। क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला। आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु, वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा आप क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
8: कुछ मीठा बोलो।
9: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
8: मैं खाने की बात कर रही थी।
9: अच्छा, एक काम कर, गुलाब जामुन मंगा दो।
8: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना। तो

91.2 मेगाहर्ट्स पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना वीडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, जब जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आए तो वो आपसे फोटो आईडी, दस्तावेज और यहाँ तक कि आपके फोन का ओटीपी भी मांगेंगे। जरा संभल के रहिए। बिल्कुल गलत। आइए आज सच जानते हैं। जनगणना अधिकारी कभी भी आपसे फोटो आईडी, ओटीपी या कोई भी दस्तावेज नहीं मांगेंगे। बस उनके सवालों का सच्चाई से जवाब दीजिए। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए।
3: हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: दोबारा उसी सांप से डसवाते हैं, जहर कट जाएगा।
1: नहीं नहीं, झाड़ फूक करवाते हैं, अभी ठीक हो जाएगा।
0: या फिर मुंह से जहर चूस के निकाले क्या?
2: अरे ठहरिया ठहरिया, अस्पताल ले जाने के अलावा आप लोग सब ऐसे ऐसी बातें कर रहे
3: हैं। उठाओ उठाओ, अस्पताल ले जाओ भाई।
2: कमाल के हाँ, इन्हीं सब के चक्कर में हर साल मैं आपको बता दूं, 50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। समाधान होते हुए भी ऐसा मत होने दीजिए, समझे? तो याद रखिए देवी और सज्जनों, सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
0: जी सरपंच जी, अब से अस्पताल ही जाएंगे।
4: सांप का वार अस्पताल में ही उपचार।
5: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
6: धृतराष्ट्र ने अपने 100 बेटे क्यों खो दिए? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ था, धरती खून से लाल थी, राजमहल में एक पिता धृतराष्ट्र टूट चुके थे, कृष्ण के सामने फूट पड़े और कहे, प्रभु मेरे 100 बेटे मेरी आंखों के सामने मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? कृष्ण ने उनकी पीड़ा सुनी और शांत स्वर में कहा कि महाराज, आज से 50 जन्म पहले आप एक शिकारी थे, आपने एक पक्षी को मारने की कोशिश की लेकिन निशाना चूक गया, क्रोध में आकर आपने उस पक्षी के 100 बच्चों को मार डाला, आज जो दुख आप झेल रहे हैं वो उसी पाप का फल है। धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि लेकिन प्रभु वो पाप तो 50 जन्म पहले किया था, सजा आप क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने बहुत पुण्य कमाए थे, उन्हीं पुण्यों के चलते आपको इस जन्म में 100 पुत्र मिले, ताकि आप अपने कर्मों का फल का पूरा भोग सके। जीवन का सत्य यही है, कर्म लौटते जरूर है, कब लौटेंगे?
7: कुछ मीठा बोलूं?
8: रहने तो तुम्हारे बस की नहीं है।
7: मैं खाने की बात कर रही थी।
8: अच्छा, एक खा कर गुलाब जामुन मंगा दो।
7: कोई जरूरत नहीं है, अब घर चल के ही खाना। तो

रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो। हम सबका यही है प्रयास, दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज। सो स्टे ट्यून विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

हर्ट्ज पर आप हैं समय रेडियो व्यंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी हाजिर हो गई हूँ श्रोताओं कार्यक्रम भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना लेकर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला भक्ति गीत।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला भक्ति संगीत।

आराधना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। श्रोताओं, भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत।

0: फिक्र मत।
1: राधा रानी जब चाहेगी तब जब चाहेगी कोई न कोई जरिया बना के तुझे दर्शन जरूर दे, दर्शन जरूर, दर्शन जरूर दे, दर्शन जरूर दे।
2: श्रोताओं, भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत।